डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: We're beginning the bulletin on a bit of a tragic note. This is circling back to that headline we were just talking about, the Chamoli tunnel tragedy. The death toll only with each passing hour has mounted in that case. Now what we're learning about is 7 dead and over 14 injured in the Uttarakhand tunnel tragedy. Water debris entered Chamoli tunnel in Uttarakhand. The rescue operation is still underway for one more trapped worker. Rescue operations were halted due to the water levels that had risen within the tunnel along with the debris, leading to the complications in terms of carrying forward the very operation. A tunnel under construction at the THDC project in Uttarakhand's Chamoli district has collapsed, remember, and trapping several workers, that is, after the debris and the water entered the site. Remember, a similar case had taken place just 2 years back at Uttarakhand itself, and this is yet another such tragic case that we're bringing to you news about. Let's quickly listen in to what the Chief Minister has had to say on the very matter.
1: जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मर्ड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है, उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहां पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहां पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां हैं कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं।
0: On that note, we have Ankit Sharma joining us on the broadcast with more details. Ankit, very good morning to you. What seems to be the situation this morning at the collapse site? Where is the rescue operation currently headed?
2: Good morning, Shreya. Well, the rescue operations were underway since last night, and right now the lookout is still on for the last survivor in the whole incident. At 7 p.m. yesterday, the part of the tunnel collapsed, and in this impact, at least 22 people were trapped, and out of them, 14 were rescued alive and they were sent to the hospital. Some of them were also airlifted to AIMS, and while 7 people are dead. Now, let me tell you that those who are dead, most of them are from Jharkhand, and 2 of them are from Uttarakhand as well. While the search is still on for the last survivor in this whole incident, and like we saw in Silkyara, once again, the question arises about the security of people who are working in hydro projects, especially the underground tunnel projects where there is a risk of aquifer puncture as well. And it is believed that the water along with muck entered the whole tunnel, and that is why probably this is the reason why the people died in this whole incident.
0: Right. So the water entering the very tunnel was an added challenge in this very case. Viewers, Ankit, thank you for bringing us those details. Viewers, we have another response that had come in last night with regards to the rescue operations, how they were in fact conducting them in this very terrain, given the tricky situation that was added with this very water entering that very passageway.
3: जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं, तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी। पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं।
0: On that note, viewers, we have more breaking news that's coming in. This is Ambala Sikh protest turning violent. That's what we are learning about. The cops used tear gas, lathi charge to clear the highway. It was a protest by the members of the Sikh community over the alleged delay in registering an FIR against Gursimran Singh Mand in the Panjokhara Sahib dispute that turned tense in Ambala on Thursday, with police using tear gas and a lathi charge to clear the highway blockade that they had in fact built. During that very incident, police sources say an Ambala DSP, Varinder from Narayangarh, had his thumb severed, and 6 to 7 other police personnel were seriously injured and admitted to the ICU for treatment. Some protesters were also injured in the very process. DSP Varinder also received a severe arm injury, along with his thumb being severed in those exchanges, the skirmishes and clashes that took place. When one Sikh protester attacked him and then decapitated his thumb, and he was referred to military hospital quickly and then sometime back to the PGI in Chandigarh. Now, police resorted to lathi charge and fired tear gas shells amid all of these clashes. That is the DSP that we were referring to, the visual of him being treated that we have been able to access. You can see the exact moments as well on your screens at the very highway when the tear gas shells were in fact fired. Due to the clashes intensifying and escalating on the highway. Now, Aseem Bassi joining me on the broadcast with more details on the same. Aseem, a very good morning to you. What more details do we have from the clashes that took place, and some of the visuals that have come in show that the situation had escalated quite a bit?
4: Yes, the situation turned violent last night when basically some Sikh organizations and the activists, they were sitting on a dharna and blocked the Amritsar Delhi highway, demanding action against one Gursimran Singh Mand. When the police tried to vacate the highway, because it is a very important highway, this clash erupted. As per the DGP, somebody pelted stones, and after that, the police used force like tear gas shells, etc., in which a few policemen were also injured, and others were also injured. But as of now, it is told that last night only, the police cleared this highway for the common traffic. The situation turned very tense and violent over an incident, because the Sikh organizations were demanding action against FIR and arrest of Gursimran Singh Mand, and also the release of a few of the persons who were arrested by the police. But as of now, the situation is peaceful. The highway is open, but the police is keeping a close vigil on the situation.
0: So the highway has been opened up, viewers, but the alert is still there. The police is on high alert in terms of whether things do again go the way down where disturbances break out. This is the latest that we're bringing to you. Aseem, thank you for those details. Shifting our focus to a political story that's dominating the national arena now, it's the Congress Party and the leader of opposition, Rahul Gandhi, who's taken up the spotlight and have found themselves at the center of another political storm. It all started with this press conference that was in fact done by the Congress Party, with Rahul Gandhi addressing the press conference himself. And Rahul Gandhi and the Congress leader, Sandeep Dixit, mocked Prime Minister Narendra Modi's foreign policy, but with a bizarre skit that they put up on the stage. The two leaders hugged each other, taking a jibe at what they claimed as the Prime Minister's fondness for hugging world leaders. In fact, Sandeep Dixit went a step further. He made a sexist remark asking Rahul Gandhi if he had hugged him, thinking he was the Italian Prime Minister, Meloni. Rahul Gandhi responded with a laugh, saying, "I haven't reached that stage yet." The BJP has accused Rahul Gandhi now of crossing the line, calling the remarks obscene and indecent. Union Minister Prahlad Joshi and Rahul's actions reflected growing frustration and desperation. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma also called the Congress leader's behaviour disgraceful and shameful, accusing them of making objectionable remarks about a woman head of state and attempting to damage India's foreign relations at the same time. Take a look first at the reactions that have come in on this entire story, a political storm, a war of words that has been snowballing since this very event and the address by Rahul Gandhi.
5: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
6: एक चीज पूछ सकता हूं?
5: हाँ।
6: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
5: I have not reached there yet.
7: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
8: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।
9: संसद के परिसर में खड़े होके इतनी बचकानी, ओछी, अमर्यादित हरकत कोई चुनावा सांसद कर सकता है तो उसका नेता जरूर नकली गांधी गांधी होगा, गांधी नहीं हो सकता। महात्मा गांधी की विचारधारा में इस तरह की छिछोरी, ओछी, घटिया हरकतों की कहीं जगह नहीं है। इस तरह की हिंसा, एक तरह की हिंसा चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इन लोगों ने जो कृत्य किया है, मैं उन सब छछुंदरों को कहना चाहता हूं कि आज उन छछुंदरों के हाथ में नकली बंदर है, पर वो नकली बंदर के सहारे असली बंदरों की फौज में शामिल नहीं हो सकते हैं।
10: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनोवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
0: नाउ as a follow up to that very story, we have breaking news that's coming in. This is BJP going all guns blazing against Rahul. Rahul mocks Prime Minister's haglomacy and BJP fumes. No holds barred at this given point when they have come out to counter attack Rahul Gandhi. And sexist shocker during Rahul Gandhi's speech is what they have flagged and highlighted and come out to take a jibe against. BJP says Congress has crossed all lines of decency. As you could hear, some of those leaders already speak up against what Rahul Gandhi said yesterday, and even Sandeep Dixit said yesterday. The BJP further said that Congress is making objectionable remarks on women. It's a bid to sabotage foreign relations. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has come out to post this on Platform X over Rahul. Congress's dynastic leadership has once again crossed every line of decency, making objectionable remarks about a woman head of the state who leads a friendly country. This is not merely political indecency. It is also an attempt to sabotage India's foreign relations. When disrespect towards women becomes a source of amusement, it speaks volumes about the culture being encouraged. Disgraceful and shameful. That is what's been said by the Assam Chief Minister. Now, of course, this story, as the day progresses, will only get more and more amplified. There will come in reactions from both sides. But till now, if we just take a look at the details that have come in, it was a certain event of the Congress party that was underway where it was Rahul Gandhi addressing the very gathering there. And that's where he brought up the foreign policy that India follows. And he mocked the foreign policy. Again, mocking political leaders or mockery exchanged between political leaders is not something very new. But where do you draw the line? Where is it that you wait when it becomes below the belt as an attack? That remains to be a big question. This is not the first time that the Congress has come in the line of fire, especially with the BJP alleging that their attacks have been rather crass and below the belt. In this very case as well, the BJP has to say very clearly that this is not just an attack on or a mockery of one particular individual, but that given individual holds a constitutional post and at the same time is representing India at all global platforms. So when you're making fun of his actions when he goes abroad, then you're making fun of the foreign policy that India in itself engages. But the bigger problem here is also what Sandeep Dixit came out to say, and in fact not just imply, but say in those many words. That is what is being called as a sexist remark by the BJP at this given point. Let's quickly listen into some more reactions that are coming in before we proceed.
8: Rahul Gandhi's shameless stunt and the vulgar insinuations about Prime Minister Modi ji's foreign policy only reflect the third-rate filthy politics of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's crude and uncivilized antics expose the debased and twisted mindset of the Congress party and the Congress leadership. Rahul Gandhi for a long time now has polluted the political discourse and plummeted it to the lowest of lows with his foul rhetoric. And this is the reason, the uncultured, uncivilized, indignified politics of Rahul Gandhi is the reason why our people repeatedly rejected Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi now is the biggest liability in Indian politics.
0: So yes, viewers, we will keep a very close track of how things do develop on that very note. But right now, there is another story that's come out to be very crucial and developing as we speak. It's political shockwaves after Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal was attacked inside a Gurudwara in Nander yesterday. The attack has triggered a political war of words with the Shiromani Akali Dal, alleging a conspiracy, while parties across the political spectrum have condemned the very violence. Badal was attacked with a kirpan while visiting the Gurudwara. He suffered a minor injury, in fact, to his right hand and is out of danger, however, right now. Badal was attacked with a kirpan by 62-year-old Nihang Jaspal Singh, who was performing seva at the Gurudwara. He was immediately detained by the police from the very site itself. The Akali Dal, in fact, has alleged a deep-rooted conspiracy and a massive security lapse, demanding a time-bound CBI probe into the very attack. The Aam Aadmi Party has also condemned the attack, but has also asked the Akali Dal to introspect, pointing to allegations of sacrilege and injustices during the Badal era. Now, the BJP and the Congress have also condemned the attack, stressing that there is no place for political violence in a democracy.
11: जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है. वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में. पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमिडिएटली उसको रोक लिया और इमिडिएट कस्टडी में ले लिया.
12: आज भी जो कुछ हुआ इसमें भी ये सारे एंगल देखे जाने चाहिए. हाई लेवल सीबीआई इंक्वायरी की हमने मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए. और कोर्ट को इसको मॉनिटर करना चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एक तरफ हमला हो रहा था उधर पंजाब में, आम आदमी पार्टी के जो सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा कि वो क्या नैरेटिव सेट करने वाले हैं। जब ऐसी सीरियस इंसिडेंट के ऊपर स्टेट के चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर ऐसे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या सोचा जाए, किस तरफ आप पंजाब को लेकर जाना चाहते हैं, ब्लडशेड करवाना चाहते हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स करवाना चाहते हैं। उसके बाद कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष, उसका ट्वीट भी ऐसे ही लगता है कि जैसे एक ही जगह पे बैठ के दोनों लिखे हों, एक को इंग्लिश में पकड़ा दिया हो और एक को पंजाबी में पकड़ा दिया हो।
13: ये बड़ी डीप जड़ी है कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझना कि सेंटर नू इससे सावधान होके आप इधर नोट्स लेना चाहिए कि अज सुखबीर सिंह बादल नहीं, कोई भी देश के किसी भी लीडर से लोकराज कित भी हो सकता है, लोकराज की लड़ाई हो रहा है लेकिन मरण मरा जी गल लोकराज नहीं कहा सकता। इस करके सानू सब नू चेता करने की लड़ है, देश की सेंटर सरकार भी लड़ है। इस करके इन्हों घटनावां की जो कर रहे ने असी जोरदार निंदा कर रहे और पंजाब के लोगों कह रहे हैं तो देश के लोगों कह रहे हैं कि यहो जी पार्टी तो बचो, इस तरह की पार्टी इस तरह की लीडरशिप तो बचो जिहड़ा देश का नुकसान कर सकता है कितने भी कर सकता है।
14: देखो जो नदेड़ साहब में आज हुआ है, सरदार सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, ये बहुत गलत हुआ है। देखो कभी भी किसी को कोई हक नहीं है किसी पे अटैक करने का। जो सरदार सुखबीर सिंह बादल जब गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने गए, नदेड़ साहब मत्था टेकने के बाद जब बाहर आए तो अटैक हुआ तो कहते नहंग बाणे में था। इसकी जांच हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत आदेश दे दिए कि इसकी पूरी जांच हो जाएगी। ये जो है मैं बड़ी गंभीरता से इसकी जांच होगी, ये पंजाब जैसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, महाराष्ट्र में इसमें बहुत सख्ती से जांच होगी और जो जिसने ये किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा।
15: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुखद बात है, पर लोकराज में लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जो भी ऐसा अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
16: आज तख्त श्री हजूर साहब विखे सुखबीर सिंह बादल होरां दे उत्ते हमला करन दी कोशिश कीती गई है। इस हमले दी असीं सख्त शब्दां दे विच निखेधी करदे हां, किसे दे उत्ते भी इस तरह दा हमला नहीं होना चाहीदा। गुरद्वारा साहब दे विच इह हमला बिल्कुल नहीं होना चाहीदा। पर नाल दी नाल एक गल जिहड़ी अकाली दल बादल नूं समझण दी जरूरत है, शांतमई तरीके दे नाल लोकां दे उत्ते।
0: Shifting our focus to the state of Punjab and this big story that's developing there in the recruitment process that's facing yet another legal roadblock as we speak. What is it all about? Let's take you through the details. After the pharmacy officer recruitment was put on hold, it's the Punjab and Haryana High Court that's now stayed the selection process for as many as 85 posts under the Punjab State Rural Livelihoods Mission, 41 block program managers and 44 cluster coordinators. The case centers on how marks were awarded, and candidates alleged that while the written examination carried 70 marks, there was no clear record or disclosure of the remaining 30 marks covering qualification, experience and interview. The High Court examined the original recruitment records and raised questions over the absence of separate marking records for qualification and experience, along with concerns over fairness and transparency. Now, the Akali Dal has used the order to attack the Bhagwant Mann government, alleging that Punjab's recruitment system is failing their aspirants. And the BJP, on the other hand, has also stepped in and demanded transparency and accountability in the entire process. Now, government, however, says this is not a cheating or paper leak case, but an issue that's concerning the marking of 85 posts and says it will examine the court order.
17: मैम मुद्दा ये है कि ये जो PSRLM स्कीम के अंडर जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी 28 जनवरी को, उसके बाद उसका एग्जाम लिया गया था जो 70 नंबर का था। उसके बाद 10 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, 10 नंबर वर्क एक्सपीरियंस के और 10 नंबर इंटरव्यू के देने थे जो कि आज तक बाहर नहीं आए। तो वहीं से कुछ मामला गड़बड़ाया है।
18: यानी सिर्फ 70 नंबर हैं उसी के मार्क्स डिक्लेयर किए गए थे और जो बाकी हैं वो कभी
17: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स ने अपने लेवल पे इतना ट्राई कर सकते थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी डीसी लेवल पे, उन्होंने आरटीए तक डाली, बट उनको कुछ भी एक जवाब नहीं दिए गए। दैट इज वाई हम वो हमारे थ्रू आए और हाईकोर्ट में हमने ये पिटीशन लगाई।
18: प्रोसेस को रोक दिया गया है तो क्या पोजीशन है
19: मैम? ये आई गेस इट्स बीन 2 months केस चला एंड अब उसके बाद जज साहब ने एक कमेटी बिठाई थी और 4 members एंड बोला था कि आप रिजल्ट को एग्जामिन करो, बट हमें पता चला था कि सेलेक्ट हो गए हैं कैंडिडेट्स, बट हमारा कोई पब्लिक नोटिस नहीं आया ऑफ द रिजल्ट, कुछ नहीं आया था, बट उसके तभी जज साहब ने कमेटी बिठाई थी और कमेटी में एग्जामिन करने को बोला था सारा रिजल्ट और रिकॉर्ड कि कैसे कैसे क्या क्या मार्क्स लगे हैं कैसे लगे हैं, बट अभी भी अब कमेटी बनी है, उन्होंने रिपोर्ट हमें दे दी है एंड उसमें अब उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज काफी निकली है जो वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसीज हैं।
20: अभी जो पेपर था और जो ये जो 85 जो एम्प्लॉइज वाला वो अभी कल ही आई गेस कोर्ट ने ऑर्डर करा था इसके ऊपर, तो उसमें कुछ पेपर लीकेज का इशू नहीं है, ना ही उसमें चीटिंग का इशू था, उसमें कुछ नंबर्स को लेके कि जैसे किसी को नंबर्स वगैरह में कुछ इशू था, तो वो उस चीज के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जल्दी डिसीजन आ गया।
21: आम आदमी पार्टी विद्यार्थियों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बड़ी मेहनत से एक जो विद्यार्थी है वो तैयारी कर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचता है और जब वहां जाकर उसके साथ पेपर लीक जैसा फर्जीवाड़ा हो जाए तो वो उसके सारे परिवार के जीवन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देते। जो अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के जंतर मंतर के धरने का समर्थन करते थे, तो अब हाईकोर्ट के ऑर्डर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में भर्ती के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसकी सीधी सीधी नैतिक जिम्मेवारी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी से ऊपर कुछ नहीं है, विद्यार्थी के इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए।
15: देखो ऐसा है कि हिंदुस्तान की जिहड़ी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, इस ते बहुत ही गंभीरता नाल दोबारा विचार करने की लोड़ हैगी है। सूबे एक सूबे तो बाद दूजे सूबे दे विच जिस तरह पेपर लीक हो रहे ने, तुसीं देख ही रहे हो कि दिल्ली च सारे जिहड़े नौजवान छात्र सिगे विद्यार्थी सिगे उन्होंने कट्ठे होके किस तरह मुजाहरा किया, झारखंड च भी हुण भी जिहड़े विद्यार्थी ने वह बाहर सड़कां दे उपर बैठे हुए ने, हुण पंजाब च भी जे पेपर लीक होया है और हाईकोर्ट ने उहदे उपर रोक लाती है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इहदा एक साफ सार निकल के आउंदा हैगा कि हिंदुस्तान की जिहड़ी शिक्षा प्रणाली है उस ते मुड़ तो दोबारा ते विचार करने की लोड़ है।
0: On that note, viewers, we are in fact slipping into a short break, but do stay tuned as on the other side, there is another big story that we will be tracking. It's a major U-turn by the Bar Council of India, removing an ALSA 2026 batch ban, move after severe backlash was faced online. This with more details on the other side. Stay tuned as we come back.

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह से उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Well, we're beginning the bulletin with breaking news. This is with regards to one of the biggest stories we're tracking for the day, a political story, that is the BJP now going all guns blazing at that very event where Rahul Gandhi made a certain speech about Prime Minister Modi's aglomeracy. And adding to fire to that very fuel was Sandeep Dixit's sexist remark with regards to a certain leader of state, that is Giorgia Meloni. Now, sexist shocker during Rahul Gandhi's speech, the BJP has now gone all guns blazing, saying Congress has crossed all lines of decency. Congress is making objectionable remarks on women. This is a bid to sabotage India's foreign relations. This is BJP's R. Kesavan, who says Rahul Gandhi's shameless stunt and vulgar insinuations targeting Prime Minister Modi's foreign policy reflect the third-rate filthy politics of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's crude and uncivilized antics expose the twisted and debased mindset of the Congress leadership. If Rahul Gandhi wants to talk about foreign policy, let him first talk about Nehru, whose tenure as foreign minister for 17 years was hyphenated and riddled with failure and fiasco. So this, as we had anticipated, would be blowing up into a bigger, wider debate, which just got triggered from this very event by the Congress yesterday. Listen in to what's been said.
1: Rahul Gandhi's shameless stunt and the vulgar insinuations about Prime Minister Modi ji's foreign policy only reflect the third-rate filthy politics of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's crude and uncivilized antics expose the debased and twisted mindset of the Congress party and the Congress leadership. Rahul Gandhi for a long time now has polluted the political discourse and plummeted it to the lowest of lows with his foul rhetoric. And this is the reason, the uncultured, uncivilized, indignified politics of Rahul Gandhi is the reason why our people repeatedly rejected Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi now is the biggest liability in Indian politics.
0: Now let's quickly look back and take you to what was the trigger point of this entire debate. It was a certain remark that was made by Rahul Gandhi at this Congress event. Listen in to what he had said before we proceed with more details.
2: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
3: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
2: आई हैव नॉट रीच देयर येट.
0: दैट इज द वेरी एक्सचेंज दैट टुक प्लेस वेयर संदीप दीक्षित एडेड टू द जाइब दैट वाज टेकन बाय राहुल गांधी. बट इवन व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिक्स, देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ attacks and counter-attacks involve jibes that are taken by political leaders at each other. But at the same time, the Congress in the recent times has seen itself at the center of several such controversies where the attacks that have come in from certain party members, in this case, the leader of the opposition of the lower house himself, has been looked at in bad taste. After all, we are speaking of the foreign policy of the country. While the opposition can absolutely be in disagreement with the foreign policy, but certain kinds of remarks and jibes being made at the foreign policy, be it the foreign policy, be it the person who's holding the very role of prime minister, it's a constitutional post at the end of the day, it's not seen in the most tasteful light. So this is what we're discussing about here, and it's a huge backlash that they've faced from the BJP as well, who have questioned Rahul Gandhi's decency over these very remarks. In fact, to put it further into context, we have Himanshu Mishra joining us on the broadcast. Himanshu, a very good morning to you. Ye jo Rahul Gandhi ka bayan hai, pehli baar aisa bayan nahi aaya hai, sirf Rahul Gandhi ki baat nahi kar rahe hai, par Congress worker ki baat kare ya Congress leader ki baat kare, ye pehli baar nahi hogi ki BJP ने ये अटैक किया है कि कांग्रेस हमेशा बिलो द बेल्ट अटैक्स करते हैं. ऐसी अटैक्स पहले भी हुई है एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग वापस ऐसी अटैक्स देख रहे हैं जो एक काफी डिस्टेस्टफुल लाइट में देखा जाता है.
4: देखिए बिल्कुल अभी तक जो है राजनीतिक तौर पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक होते रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को लेके हुए हैं और तमाम तरीके के इश्यूज पे जो है अटैक हुए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब फॉरेन पॉलिसी को लेकर अटैक किया गया है. और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है अगर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, विजिट पर रहते हैं, तो वहां अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन डिग्निटरीज है या स्टेट ऑफ हेड्स है उनके साथ जब वो मुलाकात करते हैं तो एक संदेश देना चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में और दोनों लीडर्स के बीच में कितने मधुर संबंध है और वो भारतीय जो परंपरा और संस्कृति है उसके अनुरूप जो है उनके साथ गले भी मिलते हैं और हाथ भी मिलाते हैं. और इसी को कल जो है जब राहुल गांधी एक संबोधन कर रहे थे यूथ कांग्रेस को लेकर, वहां उन्होंने जो इस तरीके की चीजें करके दिखाई ड्रामेटिक रूप में, कहीं ना कहीं उसको लेकर बीजेपी अटैक पे है और बीजेपी ने भी तमाम इस तरीके के वीडियोस और फोटोग्राफ जो है वो जारी किए हैं. बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इंदिरा गांधी का एक फोटो जो है जारी किया है. दूसरा यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे अराफात, उनके साथ उनका जो है एक हाथ मिलाते हुए का फोटो है. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर अटैक है कि ऐसा जब भी जो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं भारत के या राष्ट्रपति जब वो फॉरेन विजिट पर जाते हैं तो जब भी दूसरे देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके साथ या प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ जब भी मुलाकात होती है तो इस तरीके के जेस्चर्स जो है वो दिए जाते हैं. ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, उनसे पहले के भी जो प्रधानमंत्री रहे इस तरीके के जेस्चर्स दिए हैं और इस तरीके से उन्होंने दूसरे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको गले मिला है. तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आप जो है फ्रंट फुट पे अटैक के मोड पे है राहुल गांधी का. और जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने जो इटली की राष्ट्रपति है मेलोनी उनको लेकर जो है एक कमेंट किया उस पर और ज्यादा तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है राहुल गांधी और कांग्रेस से इस चीज को लेकर जवाब मांग रही है कि क्या आप फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर भी जो है हम वो सवाल करेंगे.
0: जी बिल्कुल हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल गिवर्स दैट वन कमेंट बाय संदीप दीक्षित रियली एडेड फ्यूल टू द फायर, वन वुड से, एज वी मेंशन्ड अ लिटिल व्हाइल बैक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट दिस कंट्रीज लीडर दैट यू आर डिस्कसिंग अबाउट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस वेरी कंट्री दैट यू आर मेकिंग अ सर्टन कॉमेंट अबाउट, बट इट्स दिस लीडर ऑफ स्टेट ऑफ अनदर कंट्री, एन अलाय कंट्री टू इंडिया. Which is why it comes in to be even more debatable, a remark made. So let's take you back to what exactly happened. The entire sequence of events that played out and the aftermath in terms of the row that's now panned out and unfolded. The Congress Party and the leader of opposition, Rahul Gandhi, have found themselves yet at the center of another political storm. And this time it's again a murky one. During a party event, it's Rahul Gandhi and the Congress leader Sandeep Dikshit who mocked Prime Minister Narendra Modi's foreign policy with a bizarre skit. The two leaders hugged each other, taking a jibe at what they claimed as the Prime Minister's fondness for hugging world leaders. And it's at this point that Sandeep Dikshit made a sexist remark asking Rahul Gandhi if he had hugged him thinking he was the Italian Prime Minister Meloni. Rahul Gandhi responded with a laugh saying, "I haven't reached that stage yet." The BJP has accused Rahul Gandhi now of crossing the line and calling the remarks rather obscene and indecent. It's a union minister, Prahlad Joshi, who said Rahul's actions reflected growing frustration and desperation. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has called the Congress leaders' behaviour disgraceful and shameful, accusing them of making objectionable remarks about woman head of state and attempting to damage India's foreign relations.
2: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस.
5: मैं तो बच्चे फिर रहा था.
2: अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
3: एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
2: आई हैव नॉट रीच देयर येट.
6: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है. और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है. प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है. क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग.
7: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं. उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए. और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है. और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं. अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गए. मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं.
8: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे. ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनोवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक. इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है. लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है. एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर.
0: Padma joining me on the broadcast to throw some more light on this very aspect itself. Amit, a very good morning to you. You know, there's a big debate that's already begun, unfolding, and I think as the day proceeds, we will see it further blowing up. But the question still remains, the remarks made by Sandeep Dixit, the remarks made by Rahul Gandhi, at the end of the day, it doesn't throw good light on the country. And in this case, they've even gone ahead to make a comment on the leader of state of another country, which really doesn't do very well for India and its foreign relations at the end of the day.
9: Right, you know, this particular comment that was made by the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the moment that comment came out in the stage, possibly, you know, Sandeep Dixit and Rahul Gandhi, both of them were trying to pull off a banter on Prime Minister Modi. But at that particular moment itself, it was clear that this is heading towards a political storm in the country, and the Bharatiya Janata Party will leave no stones unturned to flip this narrative against Rahul Gandhi, because it has two layers of, you know, problem. Of problematic stance that the political leaders will call out. Number one, the way Rahul Gandhi has called out the foreign policy of Prime Minister Modi and the NDA government. Number two, when he that particular comment comes goes down to another country's top leader, and that particular comment itself was pretty clear that as the day progresses, this will blow out, and this will be a problem for the Congress Party as to how they will be defending their leader, the leader of opposition Lok Sabha. So clearly, the BJP has already started its attack on Rahul Gandhi, and this is only going to, snowball from here.
0: Very true, Amit. And definitely, because there is a slight difference between disagreeing and expressing the fact that you do not agree with certain policies and the way you go about with it in terms of not being extremely a little problematic with the kind of comments you put out there while disagreeing. So there is a way of also expressing disagreement. Well, this is the big story of the day that we will be tracking. But right now, viewers, we're getting some more breaking news. Let's quickly take a look. As we speak, viewers, we're taking your focus next to Uttarakhand, where in Chamoli, there's that tunnel collapse that took place last evening. Now, rescue operations have been on a war footing, and the death toll continues to mount. 7 dead, more than 14 people have been injured in the very incident, and the rescue operations continue to track the whereabouts of one more person. Now, as we speak, what is it that really added to the challenge in the rescue operation here? While, yes, there was a massive amount of debris from the very collapse that had collected inside the tunnel itself. But more than the debris, it was the water that had collected inside the tunnel which really made the rescue operation more and more complicated. Now, even as we speak, rescue operations continue to track down that one person, another worker who still remains to be missing. His whereabouts have not been found as we speak, and which is why the rescue operations still continue. And as of now, we see the death toll still mounting. 7 people whose lives have been lost in this tragic, tragic incident. Not exactly the same incident that had taken place in another tunnel in Uttarakhand, but yes, 2 years back, we'd seen another tunnel collapse that had taken place in Uttarakhand itself. That was the Silkiara tunnel. This time it's in Chamoli, which really puts everything into question. That is, the biggest question being the safety of these workers who engage in such tricky terrain, such sensitive ecological zones in itself, where we see such incidents being quite often taking place. Take a look at the responses that have come in so far.
10: जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डाटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं. तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे. उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी. पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है. तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है. तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं.
11: देखिए, एक प्रोजेक्ट है THDC का. ये करीब शाम 6:30-7 बजे की घटना है जब इसमें टनल में मलबा और पानी आया है, और उसमें कुछ जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे वो लोग उस मलबे में फंसे हैं. इसमें से करीब 18 लोगों को निकाल लिया गया है, और बाकी शेष लोगों का काम ढूंढने का काम लगातार जारी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनको भी हम निकाल लेंगे.
12: जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है, उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे. और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है जिसमें से कुछ लोग घायल हैं, और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है. सभी इलाज वहां पर दिए जा रहे हैं, और हायर सेंटर भी बात कर ली है. यहां पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां हैं कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए. उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं.
0: Viewers, as we speak, there are 2 of our colleagues who are in fact tracking this story and the rescue operations very closely, Kamal and Ankit Sharma. Kamal, aapse pehla prashna leungi ki filhal jo collapse site hai, puri raat rescue operations chali hai, aur ek aise worker ke khoj mein ye log abhi bhi rescue operations jari kar rahe hain. Filhal us rescue operation ki kya halat hai, kuch bhi pata mila hai inko ki kahan ho sakta hai वो एक और जो इंसान की तलाश में है ये लोग?
13: जी, कल 1 बजे रात से टनल में पानी पूरी तरह से भर गया है. 1 बजे तक यहाँ पे लगातार आसानी से जो खाली ड्रमों की बोट बनाकर उसे रेस्क्यू किया जा रहा था, वहां पे खोजबीन की जा रही थी. लेकिन 1 बजे रात को जब रेस्क्यू को ब्रेक करके फिर आगे बढ़ाया गया, फिर ब्रेक किया गया, फिर बढ़ाया गया, क्योंकि पानी पूरी टनल में भर चुका है. SDRF, NDRF, आर्मी, ITBP तमाम फोर्स यहाँ पे है, वो अंदर जा रही है. लेकिन वहां पे जो पानी और मलबा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर रहा है. एक व्यक्ति अभी मिसिंग है, उसे ढूंढने की पूरी ताकत इस समय लगी हुई है यहाँ पे.
0: और ऐसी कोई सूचना मिल रही है, कुछ पता चला है कि वो अभी जिस इंसान को वो लोग ढूंढ रहे हैं उनसे कोई साइन ऑफ लाइफ मिला है? क्योंकि अभी बहुत घंटे हो गए कोलैप्स होते हुए।
13: जी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो टनल के अंदर हैं और पानी का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर बाहर की तरफ को जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। पानी क्योंकि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में पांच वहां पे मोटरें लगाई गई हैं जिससे पानी को बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन पानी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में मौसम और जो पानी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
0: जी जी कमल, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास आते रहेंगे ये अपडेट्स के लिए। अंकित, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे बैक विथ मी इन जस्ट अ मिनट्स टाइम। आई विल कम बैक फॉर अपडेट्स फ्रॉम यू एज वेल, बट मीनवाइल व्यूअर्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस कॉन्वर्सेशन विथ वन ऑफ द रेस्क्यूअर्स, व्हाट अपडेट्स दे हैव टू गिव फ्रॉम द साइट इटसेल्फ।
14: कितना दूर है? किलोमीटर
15: चढ़
14: जाएगा इस पे? कितने लोग निकाल लिए
15: अभी? पांच आदमी बाद
14: अंदर अंदर है कि
15: अभी बहुत आदमी
14: है चेहरे पे अंदर तो बोर्ड है कहीं अंदर?
15: अभी देखो कितने आदमी को दिखेगा, पांच आदमी निकाल दिए।
0: Ankit, coming to you next, you know, while Kamal was giving us all of the updates from the site, one big question that remains if we speak of Uttarakhand, the terrain in itself, given the hilly region that this place is in, it's very tricky. And when you have such projects taking place in hilly terrains, the biggest question and concern that is that should in fact be taken into consideration is the safety of the workers. 2 years back, we had seen a similar tunnel collapse in Uttarakhand itself. Now we are again looking at another major collapse that's taken place with 7 lives already lost in it. So it's really time for the government to take a look that yes, while these projects are perhaps needed for infrastructural development, the safety of the workers are also of paramount importance at the same time.
16: Absolutely, and we like you were explaining and informing the audience about the Silkyara incident as well. Several questions were raised even during then, and they were faded away as time passed. But now it has come back, and these questions would be looming around in the aftermath of Pipalkoti Vishnugad project disaster, which has killed 7 people. Now these workers were not as lucky as the Silkyara workers who came out safely. 14 are injured in Pipalkoti disaster and 7 are still dead, while the search is still on for the last survivor. And the questions arise as well. The construction of these heavy tunnels, which will produce or likely to produce electricity in near future. And this is 444 megawatt project, and it's going to produce millions of electricity in the coming years. And let me tell you that this is a 3-kilometer tunnel in which 1.5-kilometer point caused the ingress and the landslide, which trapped the workers, and several workers were waiting for the rescue. 14 came out while 7 are dead. Unfortunately, this incident has struck everyone, in not only in Uttarakhand but the country as well. But now we are talking, every time we speak about such disasters, the center point of these calamities are that Himalayan are a fragile ecosystem. They are still growing. Himalayan is a young range of mountains, and they are fragile. Specifically in Garhwal region, they have several layers of rocks, whether it's sheer rock system or sediment rock system, and they also collect water.
0: So the region really needs to be studied well, Ankit, before the government proceeds with such projects and allowing permission for such projects to take place. As you very rightly mentioned, this very region, viewers, is a very sensitive zone, given the mountains, the Himalayan range is quite young, and which is why this place is a very sensitive to seismic activities as well. And when you do end up making tunnels in this very particular region, it does affect the balance of the ecological system that's in place. So yes, this is a big concern that needs to be addressed. Ankit, thank you for filling us in with those details. Next up, we have some more breaking news coming in. Well, we're shifting our focus a bit further north and bringing you this update of a cloudburst that's taken place in Jammu and Kashmir region. In fact, it's in Sarbal Sonamarg, if we are to speak of the exact location, where we now see a major flash flood having taken place after the very cloudburst. This is the road leading towards Baltal in central Kashmir's Ganderbal district, which has completely been washed away by the high current water from the very cloudburst. You can take a look. Now, Jammu and Kashmir, if we speak of, for the last couple of weeks, has been looking at massive rainfalls, torrential pours, and this is the latest update coming in from

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: The Jharkhand protest is not just about exams. On the streets of Ranchi, it's a protest over jobs, vacancies and years of waiting. For thousands of young Jharkhandis, government recruitment has become a cycle of preparing, appearing, waiting and starting all over again. India Today has been on the ground speaking to protesters at the heart of this agitation. And behind the anger over JPSC-JSSE irregularities lies a much bigger crisis. The crisis of jobs. 26,001 assistant teacher vacancies were announced. Exams were held for it in 2024. 2 years later, appointments still remain incomplete. 9,000 TGT vacancies were announced in 2016. And these posts were abolished in 2025. For an aspirant, every vacancy is a chance. But protesters say in Jharkhand, even that chance has become uncertain. We
1: have been preparing for 20 years.
2: कितने साल से करी है आपने?
1: 20 साल से कर रहे हैं, मेरा 39 साल हो गया है। मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालिफाई किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया, इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है।
0: एंड द प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू द एजुकेशन सेक्टर। 5000 पुलिस वैकेंसीज वर अनाउंस्ड इन 2023, 4 इयर्स आफ्टर द लास्ट एग्जाम। But these exams were never held. Thousands of young men and women prepare for these posts, often for years. And for those waiting against an age limit, every year matters.
3: दरोगा बनने का तो मैम ये वैकेंसी आया ही नहीं और मेरे पिताजी तो चले गए बट ये सपना सपना ही रह गया अभी हमारा मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे करे कि नहीं करे
2: अभी कितना एज हो गया
3: मैम मेरा अभी 28 हो गया मैम तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कुछ दिख नहीं रहा है ऑप्शन नहीं है ब्लैंक हो गया सब कुछ और अभी क्या ही मैं बताऊं जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली छोटा से छोटा पोस्ट भी यहां पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है तो कैसे बिलीव करेगा मैम हम लोग यहाँ के मूल निवासी है अब हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है
0: The vacancies that candidates wait for are often the difference between staying in the race and being pushed out of it.

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: खड़ा कर देते। जो अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के जंतर मंतर के धरने का समर्थन करते थे, तो अब हाईकोर्ट के ऑर्डर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में भर्ती के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसकी सीधी सीधी नैतिक जिम्मेवारी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी से ऊपर कुछ नहीं है, विद्यार्थी के इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए।
1: देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जड़ी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, इस पर बहुत ही गंभीरता नाल दोबारा विचार करने की लोड़ हैगी है। सूबे एक सूबे तो बाद दूजे सूबे दे विच जिस तरह पेपर लीक हो रहे ने, तो ये देख ही रहे हो कि दिल्ली च सारे जिहड़े नौजवान छात्र सिगे, विद्यार्थी सिगे, उन्होंने कट्ठे होके किस तरह मुजाहरा किया। झारखंड च भी हुण भी जिहड़े विद्यार्थी ने वह बाहर सड़कां दे उपर बैठे हुए ने, हुण पंजाब च भी जे पेपर लीक होया है और हाईकोर्ट ने उहदे उपर रोक लाती है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इहदा एक साफ सार निकल के आउंदा हैगा कि हिंदुस्तान की जिहड़ी शिक्षा प्रणाली है उससे मुड़ तो दोबारा से विचार करने की लोड़ है।
2: And while a massive face-off has ensued between Sikh protesters and cops in Haryana's Ambala along the Delhi-Ambala highway, after heightened tension late last evening, normalcy is now prevailing in Ambala with Amritsar-Ambala highway open for traffic. Haryana police resorted to tear gas and lathi charge to restore traffic on Delhi-Amritsar National Highway after protesters blocked the road in Ambala demanding action against Gursimran Singh Mund, National President of the International Anti-Khalistan Terrorist Front, for allegedly trying to run over some people with his car recently. Nearly half a dozen policemen, including a DSP and several protesters, sustained injuries and clashes as authorities made attempts to clear the Ambala-Delhi National Highway, where traffic remained disrupted for over 6 hours. A DSP was also injured in the clash, with reports of his thumb severed and cut to his knee, while 4 to 5 cops suffered head injuries. 5 to 6 cops still remain in the hospital. Protests stemmed after the 7th of August and what had happened when atmosphere outside the Panjokhra Sahib Gurudwara complex in Ambala turned tensed when members of Sikh community and Gursimran Singh Mund, national head of International Anti-Khalistani Terror Front, clashed, leaving cops injured.
3: कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए जी, और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफ आई आर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठी चार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4: अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की, और हमने मल्टीपल राउंड्स से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया।
2: With that, it's time for us to slip to a very short commercial break. On the other side, we'll get you details of how the BJP has gone all guns blazing at Rahul Gandhi over sexist remarks during his speech. BJP has said that Rahul Gandhi has crossed all lines of decency. This after Rahul Gandhi mocked Modi's foreign policy.
5: You are watching India Today.

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीस अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: And first up, Congress defending sexist remarks during Rahul Gandhi's speech. Congress MP Pramod Tiwari said Rahul Gandhi merely showed how the Prime Minister meets world leaders and that he is not responsible for the actions of others. A massive controversy erupted during a Congress event. During the event, Rahul Gandhi and Congress leader Sandeep Dixit mocked Prime Minister Narendra Modi's foreign policy with a skit. The two leaders hugged each other, taking a jibe at what they claimed was the Prime Minister's fondness for hugging world leaders. Sandeep Dixit then made a sexist remark, asking Rahul Gandhi if he had hugged him, thinking he was Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Rahul Gandhi responded saying with a laugh, "I haven't reached that stage yet." BJP accusing Rahul Gandhi of crossing the line, calling the remarks obscene and indecent. Union Minister Prahlad Joshi said Rahul Gandhi's actions reflected growing frustration and desperation. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma also called the Congress leader's behaviour disgraceful and shameful, accusing them of making objectionable remarks about a woman head of state and attempting to damage India's foreign relations.
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट।
3: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
4: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया, एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।
5: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेषतौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
6: एफएससी सर्टिफिकेट इज फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसआईआर। द भारतीय जनता पार्टी टुक ऑब्जेक्शन टू इट एंड मेड रिप्रेजेंटेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया objecting to the use of this particular certificate to be enrolled in voter list. And it is only a replacement of ration card, but it is not an identity. But the Congress government is trying to make it as an identity so that bogus voters can be registered in the voter list. The matter, we have opposed it. The matter is pending before Telangana High Court today. Let us see what happens. But anyhow, the malafide intention of the Telangana government is exposed by the order of the Election Commission of India.
7: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन गरिमाहीन अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर
8: दे हैव डिसाइडेड व्हाट मे कम वी हैव टू अटैक देम इवन इन एनी लैंग्वेज दे विल स्पीक बिकॉज दे आर ऑल डेस्परेट to have power. See, without power, Congress cannot survive. So that he have no knowledge. He is a empty vessel like. So that he always bark like. That's all.
0: While Congress defended the sexist remarks during Rahul Gandhi's speech, listen in to what he said.
9: राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यही तो कहा है लोग भूल गए ऑपरेशन सिंदूर भारतवर्ष अकेला पड़ गया था और प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं जिस ढंग से मिलते हैं राहुल गांधी ने वही तो उठाया था राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ
0: एंड इवन एज द बीजेपी इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग लेट्स रिकाउंट द पास्ट इंसिडेंट्स इन दोज टाइम्स व्हेन द कांग्रेस टुक इट टू फार 2026 ऑफ कोर्स वी सॉ राहुल गांधी हकिंग संदीप दीक्षित परफॉर्मिंग दैट स्किट एंड संदीप दीक्षित सेइंग यू हक्ड मी अज्यूमिंग आई एम मेलनी दिस वाज सेड बाय संदीप दीक्षित एंड दैट टू ऑन स्टेज यू वुड रिमेंबर That 2007 comment that was made by Sonia Gandhi, she was the Congress chief then, and she said, Modi is Maut ka Saudagar. In 2023, it was Rahul Gandhi who said, Narendra Modi is a Panauti. And in 2023, again, you would remember Pawan Khera, Congress spokesperson, had said that Narendra Gautam Das Modi, that is what he had said in 2017. Manishankar Iyer had said that Modi is a niche aadmi. So we've seen these abuses that have been hurled by the Congress against Prime Minister Narendra Modi. And every time it was below the belt, low political discourse that was witnessed by the Congress against Prime Minister Narendra Modi. And well, it's a big revelation in Air India flight turbulence row. The Air India Airbus A320 aircraft, which was en route to Delhi from Phuket on the 4th of August, experienced a sudden altitude drop of about 300 feet. The airline had initially attributed the incident to severe turbulence. Initial findings by Airbus have revealed that control was lost for about 4 seconds on Air India Phuket Delhi flight that suddenly lost control around 300 feet of altitude on the 4th of August. Now, following an analysis of digital flight data recorder, Airbus revealed that the flight control on AI-2379 was briefly lost after all three hydraulic systems experienced losses. Airbus, in its initial findings, also pointed to a full nose-down input as flight lost altitude. It basically means that the aircraft received a command to lower its nose, causing the aircraft to pitch downward. Admitting technical glitches in connection with the incident, Airbus has asked Air India to carry out a detailed inspection of the aircraft. The Air India Airbus A320 aircraft, which was headed to Delhi from Phuket on the 4th of August, encountered a sudden altitude drop of about 300 feet. It left 20 passengers and 4 cabin crew members severely injured. 17 people had to be hospitalized. The aircraft had 137 passengers. Yes, AI2379, the turbulence probe that is underway, where Airbus has flagged a technical glitch. Flight data then decoded by Airbus Engineering, where Airbus has admitted that there was a technical glitch alert in AI2379. Airbus has also said that technical data points to nose-down input. In fact, the probe has revealed that full nose-down input that began during the flight, the flight control that was lost for about 4 seconds, while it was airborne, Airbus has said that AI2379 has suffered a sudden loss of altitude, confirming that the injuries were reported on board. In fact, Airbus has said this to Air India, that they are conducting detailed aircraft inspection. AI2379 was flying from Phuket to Delhi on the 4th of August. And we now shift focus as CGI has called out Bar Council action against students over Nalsar controversy. CGI Surya Kant has directed that no punitive action to be taken against Nalsar students, adding that the Bar Council has nothing to do with this matter as it concerns a dialogue between the students and the CGI. CGI stated that students have the right to protest and that the BCI, that is the Bar Council of India, is interfering unnecessarily. The Bar is facing flak from all sides over the controversial order. Its chairman, Manan Kumar Mishra, stated that the Bar Council of India aims to protect the interests of the youth of India. He also responded to CGI's comments on the controversy, saying that he is ready to hold talks with the CGI if the need arises. He added that the interests of the Bar and the CGI are the same when it comes to the interests of the students. Earlier, CGI had criticized Mishra over the order and warned that legal cockroaches would come together if the order was not reversed. Meanwhile, the matter continues to escalate. Nalsar Vice Chancellor Sri Krishna Deva Rao has questioned the Bar Council of India. He said that BCI's request for an inquiry into the matter will be placed before the university's executive council to assess whether conducting such an inquiry would be constitutional and permissible. It comes after the Bar Council of India took a U-turn following the backlash over its controversial diktat.
10: स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है. जो अभिजीत दिवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है. इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं.
11: जो डिसीजन बीसीआई का था वो गलत था, हार्श डिसीजन था, इलीगल डिसीजन था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो डिसीजन उन्होंने रोल बैक किया है. ये स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों में हमारे कोलीग्स होने वाले हैं बार में, और इस किस्म के हार्श डिसीजन और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आर नॉट करेक्ट.
12: यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ एग्जांपल ही इज सेटिंग अप फॉर द इंप्रेशनेबल माइंड्स. Because the present generation of these students are actually the future of the legal profession. So it's a very serious issue, and I think it needs to be debated whether a person like this can continue indefinitely and whether he should be allowed to pass orders without reference to any provision of the statute, sweeping orders without realizing whether he has such powers to do so at all or not.
0: So you see how the story is panning out and how the Bar Council chief responded after the backlash, where they had to not just reverse the order, but CGI also making a statement saying that the Bar Council of India did not need to intervene. This was a matter between the CGI and the students. The students have the right to protest. It was about a dialogue between CGI and the students, and why did the Bar Council of India intervene? Now remember, the matter has made a mention in the top court today and will be heard at some point. CGI Suryakant directed that no punitive action be taken against Nalsar students, adding that the Bar Council of India had nothing to do with this matter and they should not have intervened. CGI stated that students have the right to protest and that the BCI is interfering unnecessarily. The Bar is facing a lot of flak from all sides over this controversial order. Its chairman, Manan Kumar Mishra, who stated that the Bar Council of India is aim is to protect the interests of the youth of India, and hence they had reversed that order. He also responded saying that CJP's comments on the controversy, that he was ready to hold talks with the CJP if the need arises. He also said that the interests of the Bar Council of India and the CJP are the same when it comes to the welfare of the students. Earlier, CJI had criticized Mishra over the order and warned that legal cockroaches, quote unquote, would come together if the order was not reversed. Now, remember, that is something that was said by the CJP to the Bar Council of India. Meanwhile, the matter continues to escalate as Nalsar Vice Chancellor Sri Krishna Deva Rao has questioned the Bar Council order that was later reversed. And we are now cutting across to the latest details coming in. Karnataka Minister Zameer's letter to DKS has sparked massive buzz seeking relief from district in charge duty. Zameer has said that he doesn't want in charge of any district. He cited BBMP, local body polls, assembly by polls. Zameer has opted out of Independence Day flag hoisting. He said that the focus needs to be on party organization, saying that the focus is needed on poll preparation instead. The minister's move that has fueled political buzz in the state of Karnataka. Zameer also submitting that letter amid fresh political turbulence. BJP has slammed Karnataka Minister Zameer Ahmed Khan. BJP has said that Minister Zameer is behaving irresponsibly after he issued that response over Independence Day celebrations, saying that the priority is needed for party organization and poll preparation rather than celebrating Independence Day, citing which he opted out of flag hoisting on Independence Day. Let me take this to my colleague Sagai Raj for further details on what Zameer Ahmed has said, how the BJP is responding to it.
13: If you notice, Ravindra Ahmed Khan has written a letter to Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar requesting him to relieve from the district in charge ministry of Vijayanagara, where he went on to say that there are a busy schedule for him, especially taking care of GPA election, which is expected anytime now. And he said that he will be occupied with that and he'll not be able to give more time with the district. And that is the reason he has written a letter and also requested that he should be allowed not to hoist the flag this time because he doesn't want to be the district in charge minister. Minister, this has not gone well with the BJP. BJP has questioned that when you are a minister, you are accountable, you have to hoist the flag and you should not get away from your primary duty of hoisting the flag. And it is honored to hoist the flag as a minister. As we speak now, you can see that Priyank Kharge, the Home Minister, is addressing the media.
14: Now the BJP is clearly saying that even his father tried many things, he could not pass. What Priyank Kharge can do, he is the fool among the bunch of fools.
15: I don't have to respond to every idiot's comments. I don't have to respond to any of the idiots anywhere. If you have the guts, answer the questions. If you don't have it, say so. You abusing me does not make you a greater intellect. You abusing me does not make the wrong right. You abusing me will not make me stop asking constitutional and legal questions. So whatever questions they have, they can call me whatever they want, but I don't think it is necessary for me to respond to every idiot's question.
14: Are you targeting RSS?
15: With what?
16: Why do you think so? Public
15: so why does BJP think so? Why does BJP think so? See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Paksh Party in that? Is the word RSS there in the... Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? The session is going on. The assembly is on. Come here, debate. If there are any shortcomings in the bill, I will correct it. I'm just following Supreme Court's order, High Court's order, on regulating public spaces and government playgrounds, government lands, government roads. You have a problem, let the BJP people do whatever they want in their house, in their in Keshav Krupa, in Jagannath Krupa, or whatever their bhavans are called. I have no problem with that. But I have not mentioned anybody. Why are they guilty?
17: Mr. Vijayendra says, sir, through this bill, these people are making...
15: Arre, tell Mr. Vijayendra and his entire BJP first to put their children in these shakas. Why are they behind me? If this philosophy is so good, if this sangatan is so good, pehle apne bachchon ko dalo, bhai, mujhko chhod do. Why am I answering these people? There is abhi session chal raha hai na. Aake udhar baat karo. Bill pe baat karo. What is the point? Why do they think it is against this sangatan? I have huge respect for RSS. I want to know them better. RSS is a 100-year-old organization. They have apparently, they are the ones who are the only people who can give Desh Bhakti certificate to everybody, whether it is you, the media persons, or me. They are the ones who are certifying who are nationals and who are anti-nationals. So I want to understand them better. But definitely this bill is not the way of understanding. In fact, I've told them. I've asked them a set of questions. They have not responded. Told if you answer that, if I'm not able to understand, you either come to my office or I'll come to Keshav Krupa or Jagannath Bhavan, wherever it is possible. Let's understand you better. That's all I'm asking. And this bill and RSS has nothing to do. Why is BJP jumping so much? How many times have you seen all these people who are calling me fool, who are calling the Congress people bunch of fools? How many times have you seen these people as full-time pracharaks, their children as full-time pracharaks?
17: It is not the first time that Congress, Priyanka Garg, is targeting. From the beginning, Congress is...
15: Why do they get so flustered? Answer the questions over, no? And this bill, again, is nothing to do with any institution, organization, NGO, any sangatan or political party. My party is older than RSS. I take permissions when I'm using public grounds. I take permission when I'm using public roads. So even you, my friends from the media, even when you are having public functions, you take permissions.
0: And that's the response coming in from the Karnataka Home Minister over the big controversy. Remember, the Karnataka cabinet that has approved a bill to regulate the use of government premises and public properties by private organizations and groups that are not registered under any law. The move that is likely to have a direct impact on the RSS. Exactly the response that came in from Priyank Kharge. Now, RSS, which conducts shakhas and other activities at public grounds and government school premises, will now need to seek prior permission for the same. The Congress government has insisted that the new bill is about regulating government property and ensuring public assets are used responsibly. Karnataka Minister Priyank Kharge, who just said that the legislation is not aimed at curbing or targeting any institution, saying it provides a legal framework to protect government land and ensure it is used for public benefit. But the BJP has said that the move is specifically aimed at the RSS, accusing the Congress of petty-minded politics. Leader of opposition R. Ashok has warned that RSS can face such challenges, adding that even Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru could not do anything to the organization.
18: Now, ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳದೆ ನುಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಎತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಎಸ್ಸಿ ಬಂದಿ ಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿನಕ್ಕೂ 1,000 ಜನ 10,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ
19: RSS ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ RSS ಅಂತ ಇಂಥ ಜನನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ RSS ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿನೇ RSS ಅವರು ನಾವು RSS ಈ ಥರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪಾಠ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
20: ಇದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ
19: ಈ ಥರ ನೀವು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ RSS ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿದಾರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆಹರೂನೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವರೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ.
18: ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲ್ ಗಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಓಪನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸಿ ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್ ದೇ ಕಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ದೇ ಕಾನ್ ಕರ್ಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಅರ್ಜ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ, ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದರ್ ಪವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
0: And we are now getting you details of the Punjab temple incident where a man assaulted a woman beggar. A man who allegedly assaulted a woman beggar with slippers and kicked her outside Mata Shri Bhadrakali temple in Kapurthala in Punjab. The accused, identified as Vikas Sharma, reportedly got into an altercation with the woman over a bike. Police have launched raids to arrest that man, Vikas Kumar. There you see the incident that was caught on camera. And the woman burger who was sitting on the side outside the gate was assaulted by that man. Let me take this to my colleague Aseem Bassi to get further details. What transpired through this incident and how the police is now trying to find this man?
20: Well, this shocking incident came to light after a video got viral that one person identified as Vikas Sharma was beating a woman beggar sitting outside Bhadrakali temple in Kapurthala with slippers and also beating him. It is he was upset. It is told that he was upset after the children of the women were doing something to his bike, and he got agitated with this, and he got so agitated that he started beating the woman with the slippers. And it was very, very shocking that this kind of act by this person. And following the video got viral, the Kapurthala police have registered an FIR. The person has identified as Vikas Sharma, although the raids are being conducted to nab him. And also the Women Commission has also taken note of this serious incident where the person is totally seen in a video that beating a woman beggar with slippers.
0: All right, Aseem, many thanks for getting us those details. Moving on, political shockwaves after Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal was attacked inside a Gurudwara in Nanded yesterday. The attack has triggered a political war of words, with the Shiromani Akali Dal alleging a conspiracy. While parties across the political spectrum have condemned their violence, Badal was attacked with a kirpan while visiting the Gurudwara. He suffered a minor injury on his right hand and is now out of danger. Badal was attacked with a kirpan by 62-year-old Nihang Jaspal Singh, who was performing seva at the Gurudwara. He was immediately detained by the cops. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal met Inspector Santosh Vijaynath Kendre of Maharashtra Police, who saved Sukhbir from the attacker. Former Union Minister Harsimrat Kaur Badal also visited Gurudwara, offered prayers and served langar after the attack on Akali Dal chief and her husband Sukhbir Singh Badal. The Akali Dal has alleged a deep-rooted conspiracy and a massive security lapse, demanding a time-bound CBI probe into the attack. The Aam Aadmi Party has condemned the attack but has also asked the Akali Dal to introspect, pointing to allegations of sacrilege and injustices during the Badal era. The BJP and Congress have also condemned the attack, emphasizing that there is no place for political violence in a democracy.
21: Jo attacker tha usko apne custody mein le liya aur usse interrogation chal rahi hai. Wo lagbhag 62 saal ka umar ka hai aur lagbhag 2 saal se yahan pe sevadar as sevadar kaam kar raha tha gurudware mein. Puri Z plus security thi sahab ke usme aur इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया.
22: आज भी जो कुछ हुआ इसमें भी ये सारे एंगल देखे जाने चाहिए. हाई लेवल सीबीआई इंक्वायरी की हमने मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और कोर्ट को इसको मॉनिटर करना चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए. दूसरी बात है कि एक तरफ हमला हो रहा था, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा. कि वो क्या नैरेटिव सेट करने वाले हैं। जब ऐसी सीरियस इंसिडेंट के ऊपर स्टेट के चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर ऐसे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सोचा जाए? किस तरफ आप पंजाब को लेकर जाने चाहते हैं? ब्लडशेड करवाना चाहते हैं? पॉलिटिकल मर्डर्स करवाना चाहते हैं? उसके बाद कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष, उसका ट्वीट भी ऐसे ही लगता है कि जैसे एक ही जगह पे बैठ के दोनों लिखे हों, एक को इंग्लिश में पकड़ा दिया हो और एक को पंजाबी में पकड़ा दिया हो।
1: ये बड़ी डीप जड़ी है, कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझना कि सेंटर नू इससे सावधान होके आप इधर नोट्स लेना चाहिए कि अज सा सुखबीर सिंह बादल नहीं, कोई भी देश के किसी भी लीडर से लोकराज कितने भी हो सकता है। लोकराज की लड़ाई हो रहा है, लेकिन मरण मराने वाली जी गल लोकराज नहीं कहा सकता। इस करके सानू सब नू चेता करने की लोड़ है, देश की सेंटर सरकार नू भी लोड़ है। इस करके इन्हां घटनावां दी जो कर रहे ने असीं जोरदार निंदा कर रहे और पंजाब दे लोकां नू कह रहे हां ते देश दे लोकां नू कह रहे हां कि इहो जी पार्टी तों बचो, इस तरह दी पार्टी इस तरह दी लीडरशिप तों बचो जिहड़ा देश दा नुकसान कर सकदा किते भी कर सकदा।
2: देखो जो नदेड़ साहब में आज हुआ है, सरदार सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बहुत गलत हुआ है। देखो कभी भी किसी को कोई हक नहीं है किसी पे अटैक करने का। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल जब गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने गए, नदेड़ साहब मत्था टेकने के बाद जब बाहर आए तो अटैक हुआ तो कहते निहंग बाणे में था। इसकी जांच हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत आदेश दे दिए कि इसकी पूरी जांच हो जाएगी। ये जो है मैं बड़ी गंभीरता से इसकी जांच होगी। ये पंजाब जैसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, महाराष्ट्र में इसमें बहुत सख्ती से जांच होगी और जो जिसने ये किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा।
5: हम ऐसे कारना हमले की निंदा करते हैं जो सुखबीर सिंह बादल जी पर हुआ है और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी करते हैं। और इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस तरह के बार बार हमले जो सुखबीर जी पर हुए वो दिखाता है कि कुछ लोग पंजाब में अशांति वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं।
3: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुखद बात है, पर लोकराज में लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जो भी ऐसा अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
23: आज तख्त श्री हजूर साहब विखे सुखबीर सिंह बादल होरां दे उत्ते हमला करन दी कोशिश कीती गई है। इस हमले की असी सख्त शब्दों के निखेधी करते हैं, किसी के उत्ते भी इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। गुरद्वारा साहब के हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर नाल दी नाल एक गल जिहड़ी अकाली दल बादल नू समझण की जरूरत है, शांतमई तरीके दे नाल लोकां दे उत्ते गंदे पानी दीआं बछाड़ां ते गोलियां तक चलियां जिहदे विच दो व्यक्तियां दी जान गई। ਇਹ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
0: And well, massive face-off ensued between Sikh protesters and cops in Haryana's Ambala along the Delhi-Ambala highway. After heightened tension late last evening, normalcy is now prevailing in Ambala with Amritsar-Ambala highway open for traffic. Haryana police resorted to tear gas and lathi charge to restore traffic on Delhi-Amritsar National Highway after protesters blocked the road in Ambala demanding action against Gursimran Singh Mand, National President of the International Anti-Khalistani Terrorist Front, for allegedly trying to run over some people with his car recently. Nearly half a dozen policemen, including a DSP and several protesters, sustained injuries in clashes as authorities made attempts to clear the Ambala-Delhi National Highway, where traffic remained disrupted for over 6 hours. A DSP was also injured in the clash, with reports of his thumb severed and cut to his knee, while 4 to 5 cops suffered head injuries. 5 to 6 cops still remain in the hospital. Protests stemmed after the 7th of August, where atmosphere outside Panjokhra Sahib Gurdwara complex in Ambala turned tensed when members of Sikh community and Gursimran Singh Mand, national head of International Anti-Khalistani Terror Front, came clashed, leaving cops injured.
24: हरियाणा के पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा साहब के बाहर हुए कुछ दिन पहले इंसिडेंट के बाद कल सिख संगतों के द्वारा जलंधर दिल्ली हाईवे जाम किया गया था, जिसके बाद गुरसिमरन सिंह मंड और उसके बेटे के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, आज हम उनके घर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन उनके सुरक्षा के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा उनकी पूरी बैरिकेडिंग करके उनके घर तक जाने का रास्ता बंद किया गया है। और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गुरसिमरन मंड जो है घर में मौजूद नहीं है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि FIR होने के बाद जो उनकी सुरक्षा है और चाक चौबंद कर दी गई है और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
4: कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उसके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है, जो लॉ ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
6: अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले फरसे और तलवारें कुल्हाड़ियों के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है।
7: कल ये सिख समाज का अपना उनका वो धरना था हाईवे पे, उस पर फिर पथराव वगैरह होगा था काफी मशक्कत के बाद वो नहीं मान रहे थे तो आपस में भिड़त होगी, उसमें उन्होंने भाई फरसे वगैरह और हमारे काफी साथियों के टोटे आई हैं और हमारे भी मेरे भी हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हो गया और DSP साहब का भी अंगूठा कट गया। डंडे भी थे उनके पास और वो दूसरा पर्से वगैरह तलवारें वो वीडियो में सोशल मीडिया पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपने देख लिया होगा वो चीजें साथ में थी उनके।
8: कल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी जल्दी सिटी सेंटर में, तो शाम के समय फिर एक भीड़ का समूह हमारी साइड आया, उन्होंने अचानक हमला कर दिया, पीछे से पता नहीं बोतल मारी की तलवार और डंडे डुंडे मारे कुछ, तो ब्लीडिंग निकली फिर वहां नीचे गिर गया।
0: Time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we'll get you details. Unfortunately, 7 people have died. Many have been injured in Chamoli tunnel tragedy in Uttarakhand. Thami has inspected the tunnel site. Search is on for one trapped worker.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं, और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं।
1: जो 7 लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 2 हमारे उत्तराखंड के हैं, 1 टिहरी गढ़वाल के हैं, 1 चमोली के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं और 2 छत्तीसगढ़ के हैं। जो घायल है, घायलों में भी अलग अलग राज्यों के हैं, उन सबकी सूची उपलब्ध है। तो एक तो पानी एकदम 3-4-5 फुट पानी हो गया, तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई। राफ्ट भी मंगाई, राफ्ट के कारण से सारा रिकवर करने में अभी भी फिर सारे पानी को निकाला, तो अभी जो 3 मिसिंग है उनके लिए भी यह है कि सारा पानी जैसे ही निकालते जाएंगे उनको उस रूप में सर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी उसमें सफलता मिलेगी।
2: देखिए, एक प्रोजेक्ट है TSDC का, ये करीब शाम 6:30-7 बजे की घटना है जब इसमें टनल में मलबा और पानी आया है, और उसमें कुछ जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे वो लोग उस मलबे में फंसे हैं। इसमें से करीब 18 लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी शेष लोगों का काम ढूंढने का काम लगातार जारी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनको भी हम निकाल लेंगे।
3: जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं, तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी। पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं।
4: बहुत तेज से पानी आ रहा है, उसके बाद हम लोग पूरा इधर बाहर फेंक दिया, उसके बाद थोड़ा पानी स्लो हो गया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके निकल गए।
5: कौन आया आपको सबसे पहले बचाने के लिए?
4: कोई नहीं आया था, उसके बाद रास्ते में इंजीनियर था वो आए थे।
5: कितने लोग थे आप काम करते?
4: 15-20 आदमी थे।
6: अरे मंजर बहुत खतरनाक था, जैसे कि जैसे उधर से हवापन जैसे उधर से आया, एकदम लूज गिर गया था ना, इसलिए पानी का बास हम लोग इधर भर तक आ गए थे।
7: ऐसा तेज रफ्तार से पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए।
8: मंजर तो बहुत भयानक था, कई बार हवा आया फिर पानी आया, फिर पानी सब तरफ टनल के अंदर भर गया, उसके बाद तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। वही करीब 14-15 आदमी थे, टोटल 20-20 हो सकते हैं।
9: Time now for a short commercial break. On the other side, our special segment, So South, where you get to watch all the making news down south. Do stay tuned to India Today.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: शुदा उसमें कुछ नंबर्स को लेके कि जैसे किसी को नंबर्स वगैरह में कुछ इशू था तो वो उस चीज के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जल्दी डिसीजन आ गया।
1: आम आदमी पार्टी विद्यार्थियों के जीवन के साथ उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बड़ी मेहनत से एक जो विद्यार्थी है वो तैयारी कर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचता है और जब वहां जाकर उसके साथ पेपर लीक जैसा फर्जीवाड़ा हो जाए तो वो उसके सारे परिवार के जीवन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। जो अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के जंतर मंतर के धरने का समर्थन करते थे, तो अब हाईकोर्ट के ऑर्डर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में भर्ती के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसकी सीधी सीधी नैतिक जिम्मेवारी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी से ऊपर कुछ नहीं है, विद्यार्थी के इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए।
2: एक सूबे तो बाद दूजे सूबे दे विच जिस तरह पेपर लीक हो रहे ने, तो ये देख ही रहे हो कि दिल्ली च सारे जिहड़े नौजवान छात्र सिगे, विद्यार्थी सिगे, उन्होंने कट्ठे होके किस तरह मुजाहरा किया। झारखंड च भी हुण भी जिहड़े विद्यार्थी ने वो बाहर सड़कां दे उपर बैठे हुए ने। हुण पंजाब च भी जे पेपर लीक होया है और हाईकोर्ट ने उहदे उपर रोक लाती है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और
3: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we'll get you details. BJP goes all guns blazing at Rahul Gandhi over sexist remarks during his speech. BJP says Rahul Gandhi has crossed all lines of decency. This after Rahul Gandhi mocked Modi's foreign policy.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि ओपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं।

0: में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: So sorry.

0: Good afternoon and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathur. Here are the headlines at this hour. BJP goes all guns blazing at Rahul Gandhi over sexist remarks during his speech. Nadda says it is India's misfortune to have Rahul as leader of opposition. BJP says Rahul has crossed all lines of decency. This after Rahul Gandhi mocked Narendra Modi's foreign policy.
1: Foreign policy is this.
0: Chief Justice of India calls out Bar Council action on students, says no punitive action on Nalsar students. Students have the right to protest. CJI says Bar Council interfering unnecessarily. Airbus admits tech glitches alert in Phuket Delhi flight, says flight lost control for 4 seconds. Flight lost control for 4 seconds and Airbus admits full nose down input began. Big win for Vijay in Karur Stampede jobs case. Supreme Court stays Madras High Court order quashing the jobs. High Court, remember, had quashed the government jobs for Karur victims' kin. It's the Karnataka government versus RSS. DK Shivkumar government's new diktat on public spaces. Government nod is a must for any events in public spaces. Move to ensure responsible use. BJP sees Congress's move ahead against the RSS, calls diktat petty-minded politics. Seven dead and 14 injured in Chamoli tunnel tragedy in Uttarakhand. Dhami inspects tunnel site. Search for one trapped worker underway. And our big story at this hour, Congress is defending the sexist remarks made during Rahul's speech. Congress MP Pramod Tiwari said Rahul Gandhi merely showed how the PM meets world leaders, that he is not responsible for the actions of others. A massive controversy, remember, erupted during a Congress event just a couple of days ago. During the event, Rahul Gandhi and Congress leader Sandeep Dixit had mocked the Prime Minister Narendra Modi's foreign policy with a skit. The two leaders hugged each other, taking a jibe at what they claimed was the Prime Minister's fondness for hugging world leaders. Sandeep Dixit then made a sexist remark, asking Rahul Gandhi if he had hugged him, thinking he was Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Rahul Gandhi responded with a laugh, saying, "I haven't reached that stage yet." The BJP has now accused Rahul Gandhi of crossing the line, calling the remarks obscene and indecent. Union Minister Prahlad Joshi said that Rahul's actions reflected growing frustration and desperation. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma also called the Congress leader's behavior disgraceful and shameful, accusing them of making objectionable remarks about a woman head of state and attempting to damage India's foreign relations.
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट.
3: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है. और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
4: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं, उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ही आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।
5: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
6: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनोवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
7: दे हैव डिसाइडेड व्हाट मे कम, वी हैव टू अटैक देम इवन इन एनी लैंग्वेज दे विल स्पीक बिकॉज दे आर ऑल डेस्परेट टू हैव पावर। सी, विदाउट पावर कांग्रेस कैन नॉट सर्वाइव, सो दैट ई हैव नो नॉलेज, ई इज ए एम्प्टी वेसल लाइक, सो दैट ही ऑलवेज बार्क लाइक, दैट्स ऑल।
0: मीनवाइल द कांग्रेस हैज डिफेंडेड द रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग राहुल गांधी स्पीच, लेट्स लिसन इन।
8: राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यही तो कहा है, लोग भूल गए ऑपरेशन सिंदूर, भारतवर्ष अकेला पड़ गया था। और प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ।
0: एंड माय कॉलीग ऐश्वर्या पालीवाल जॉइन्स मी ऑन दिस स्टोरी। ऐश्वर्या, मेजर कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड रिगार्डिंग द रिमार्क मेड ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस यस्टरडे बाय राहुल गांधी एंड संदीप दीक्षित। बीजेपी ऑफ कोर्स सेइंग इट वाज हाईली सेक्सिस्ट एंड इट इज अफेक्टिंग इंडियाज फॉरेन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। What more are you picking up from the Congress, from the BJP?
9: Well, you know, Anisha, for the Bharatiya Janata Party, this is something which is not new. But yes, you are seeing how the top leadership of the BJP has now come out and is now defending Prime Minister Narendra Modi. These kind of statements should not have been made, that too on a public platform. But this is not the first time, Anisha, that we are seeing, the Congress party coming out and making these kind of statements. In fact, there is a long list of these kind of statements being made, personal remarks being made against Prime Minister Narendra Modi, the BJP now pointing fingers and saying that he is the PM of the entire nation. These kind of remarks should not be made, and it should be Rahul Gandhi who should be apologizing. The Congress clearly, Anisha, at the moment is doing a lot of firefighting with regards to these statements.
0: Well, Aishwarya, this kind of commentary about the senior leadership of the other party is not new in Indian politics. We've seen statements coming in from the BJP, even Mr. Modi himself. When the Congress was in power, the kind of statements that were made against former Prime Minister Manmohan Singh, for example, or even Sonia Gandhi. So why is this particular commentary, this particular skit being made into such a being criticized as attacking India's foreign policy?
9: Well, because, you know, the conversation actually began when Rahul Gandhi said that this is the new kind of diplomacy that you have seen. This is the kind of diplomacy that Prime Minister Modi has been indulging in over the past many years. So when he spoke about diplomacy, this is something that the Bharatiya Janata Party picked up on and said that he is the Prime Minister. When he goes abroad, he actually represents the entire 140 crore people of India. So this is something that the Prime Minister has been trying to do to make sure that India's ties are deepened over the course of many years, and this is something that the Bharatiya Janata Party very firmly believes in. But yes, dragging a woman into it, and that to someone who's the PM of another nation, and then making these kind of derogatory remarks, this is something that the Congress Party should refrain from. A lot of firefighting obviously being done, and this statement, you know, coming in the presence of the LOP, the leader of the opposition, Rahul Gandhi, is something which the Bharatiya Janata Party says that is in very bad taste, and these kind of remarks should not be made. Anisha.
0: All right. Thank you very much for that, Aishwarya Paliwal. Politics has erupted over this criticism of Prime Minister Narendra Modi's foreign behavior in foreign countries. But moving on now to our next big story. It's a tragically bizarre case that is coming from Maharana Pratap School in Jaipur, where class 12 student Prince Soni died after reportedly eating a patty from the school canteen. The incident has sparked a massive outrage with students and parents demanding justice. Prince's classmate says the two ate patties during lunch. He claims that Prince took a big bite, appeared to choke, drank some water, and then suddenly collapsed. Yash, who's a friend, he alleges that the school staff kept Prince in a room for nearly an hour instead of rushing him to a hospital, with froth reportedly visible around his mouth. He also claims that the patties had a foul smell. CCTV footage has shown what happened next. Prince, after falling ill, was taken into a room by the school staff. A teacher is seen fanning the unconscious student with a register. The visuals have raised serious questions about the school's response and preparedness and the alleged delay in getting him medical help. His parents allege that Prince was not rushed to a hospital despite the deteriorating condition. In fact, they've accused the school of delaying medical treatment and claim that timely intervention could have saved his life. The family is demanding a probe into the canteen's food quality and safety standards. The tragedy has also triggered a massive student protest, with students demanding justice for Prince. His parents are also seeking a probe into his death and strict action against the school administration over the alleged negligence.
10: इन्होंने 48 मिनट तक स्कूल में रहेगा और डॉक्टर ने बोला आधे घंटे लेट हो गए वरना आपका बच्चा बच जाता. ये छुप यहाँ मर गया था ना मेरा बच्चा यहाँ मर गया था तो वो छुपेगा नहीं वो और सोफे में वो उसको सुला करके सारे खड़े हो गए उसके आगे ताकि ये बच्चा यहाँ सो रहा है सोफा भी है पीछे बच्चे की छोड़ो सोफा भी है पता नहीं लगना चाहिए उसने जब यू किया तो वो हेल्प मांग रहा है ना पानी की मेरी हेल्प करो मैं जीना चाहता हूँ वो मैडम इग्नोर करके चली गई और मरे हुए बच्चे को वहाँ पे ले जा करके उस सोफे वाले कमरे में क्यों ले गए यहाँ पे एक ऑफिस है यहाँ एसी चलती है खुला ऑफिस है ना बड़ा ऑफिस है इंसाफ चाहिए स्कूल बंद हो गिरफ्तार करो इन सबको
11: मेरे पास आया बोला भाई पेटीज खा के आते हैं पेटीज खाने गए पेटीज खाई उसने थोड़ी ज्यादा खा ली थी उसके गले में अटकी पानी पीने गया था पानी पीते ही उसको चक्कर है इनने स्टाफ रूम में लेटाया उनको उसको और है ना एक घंटे तक घर पे कॉल कर दिया बोला कि आ जाओ इसकी तबीयत खराब हो रही है एक घंटे तक इसको अंदर रखा ना इसको सांस आ रही थी इसके पूरे शरीर नीला पड़ गया था होंठ नीले पड़ गए थे मुंह से झाग निकल रहा था बेहोशी के हालत में था, घर वालों को बोलते हैं कि आप फोर व्हीलर लेके आओ, आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, हम कुछ ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसके घर के आए, हॉस्पिटल लेके गए मणिपाल हॉस्पिटल में, वहां पे बस डॉक्टर देखने ही आ रहा था उतने में डेथ हो गई इसकी।
0: माय कॉलीग शरद कुमार इज जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी। शरद, इट्स अ ट्रेजेडी जो हुआ इस बच्चे के साथ, सबको धक्का लगा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल के कैंटीन के खाने में कुछ खराबी थी, क्या उस पानी में कुछ खराबी थी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहोश हुए बच्चे को अस्पताल ले जाने की बजाय या डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय कर क्या रहा था, क्या कह रहे हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाले?
12: देखिए, हमारी पुलिस से बातचीत हुई है, कल भी हमने प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो लोग स्कूल बंद करके और 5 दिन की छुट्टियां करके चले गए। वहां पर प्रदर्शन जारी था, आज हमारी बातचीत हुई है, उसमें प्रारंभिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है, उसमें ये कहा गया है कि सांस रुकने से मौत हुई है, मगर क्या पैटीज में कोई जहरीला पदार्थ था या पानी में कोई जहर था, इसके लिए FSL जांच भेजी गई है विसरा जांच के लिए, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर वहां पर CCTV और DVD सब जब्त कर लिया है कि कितने देर वहां पर लापरवाही की गई है और किस तरह से लापरवाही की गई है। 50 से 100 मीटर के आसपास कोई बहुत सारे छोटे मोटे निजी अस्पताल हैं जहां का ले जाया जा सकता था, मगर स्कूल वालों का कहना है कि हम बगल में हैं, उनका घर भी है प्रिंस का, तो हम बार बार उनके पिताजी को फोन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो उनके इंतजार में देरी हो गई। अगर वो कहते कि हम नहीं आ पाएंगे तो हम व्यवस्था करते हैं, हम उनको फोन करते रहे, वो कहते रहे कि हम आ रहे हैं। इनका कहना है कि वो कह रहे थे कि फोर व्हीलर लेकर आना, हमारे पास फोर व्हीलर नहीं था, हमें इंतजाम करने में देरी हो गई। उन दोनों चीजों की पुलिस जांच कर रही है, मगर हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर प्रिंस को तुरंत लेकर जाया जाता बगल में किसी अस्पताल में तो उसकी जान बचाई जा सकती है, ये एक लापरवाही रही है। स्कूल संचालकों को अभी थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है, हालांकि उन्हें अभी हिरासत में नहीं लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, इसमें पुलिस
0: सवाल की मेरा ये भी रहेगा रेगुलेशंस में। शरद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, रेगुलेशंस सीधे तौर पर कहते हैं कि हर स्कूल में एक कोई मेडिकल प्रोफेशनल, कोई नर्स या विजिटिंग डॉक्टर कोई होना चाहिए, कम से कम बच्चों के देखभाल के लिए अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। क्या इस स्कूल में कोई नर्स या कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था? और उससे भी ज्यादा हम विजुअल्स जो देख रहे हैं, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बच्चे को सीधा पीठ के बल लिटा दिया गया। अगर ये जैसे उसके दोस्त का स्टेटमेंट आई है कि उसकी सांस रुक रही थी, तो क्या कोई भी बेसिक फर्स्ट एड जानने वाला कोई भी नहीं था कि उसको इस तरह से लिटा दिया गया, उसको कुछ भी ट्रीटमेंट देने की कोशिश नहीं की गई? क्या कोई है वहां पर स्कूल में कि नहीं?
12: बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है और ये इसी सवाल को लेकर लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन ये सही है कि वहां पर कोई इंतजाम नहीं था, उसको इस तरह से वहां पर लिटा दिया गया था और आसपास बच्चे खड़े हैं जो आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं। मेडिकल का कोई इंतजाम स्कूल में नहीं है, ये स्कूल क्या, आप जयपुर के ज्यादातर स्कूलों में चले जाइए, जो गली मोहल्लों में स्कूल हैं उन स्कूलों में तो बिल्कुल ही नहीं है। बड़े स्कूलों में भी ये एक सिक रूम रहता है, लेकिन वहां पर भी अगर कोई बच्चा घायल हो जाता है तो अभिभावक को ही फोन करके इंतजार किया जाता है। ये मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति छोटे स्कूलों में तो किसी स्कूल में हमें दिखाई नहीं देती है, वहां भी इसी तरह के हालात रहे कि जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से प्रिंस की जान चली गई, उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, मगर रेगुलेशन को लेकर कोई एक्शन शिक्षा विभाग ले पाएगी इससे मुझे शक है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद कुमार, आप बने रहिए इस खबर पर। बट मूविंग ऑन नाउ टू आवर नेक्स्ट बिग स्टोरी। The Chief Justice of India has called out the Bar Council's action against students over the Nalsar controversy. This morning, Chief Justice of India Suryakant directed that no punitive action be taken against the Nalsar students, adding that the Bar Council has nothing to do with the matter, as it concerns a dialogue between the students and the Chief Justice. In fact, the Chief Justice stated that the students have a right to protest and the BCI is interfering unnecessarily. Remember, the Bar Council is facing flak from all sides over this controversial order that was passed just last evening. Chairman Manan Kumar Mishra stated that the BCI aims to protect the interests of The legal studies and the students' interests are supreme for the council. Meanwhile, the matter continues to escalate as Nalsar Vice Chancellor Shri Krishna Deva Rao has questioned the Bar Council's order itself. He said that the Bar Council's request for an inquiry into the matter will be placed before the university's Executive Council to assess whether such an inquiry would be constitutionally permissible under the university rules in the first place. Remember, all this comes after the Bar Council itself took a U-turn within a couple of hours following backlash after its controversial dicta. The Bar Council yesterday had initially ordered that no student graduating from Nalsar in 2026 will be enrolled as an advocate by any state Bar Council till the inquiry is completed. The decision was taken after a section of the students had opposed Chief Justice of India Suryakant attending their convocation as a chief guest over his cockroach remarks. Within a matter of minutes and hours after facing heavy criticism, the Bar Council withdrew the order. And this entire drama played out between 6 p.m. and midnight just last night.
13: A student ka interest hi Bar Council of India ke liye hamare liye sarvopari hai aur युवाओं का इंटरेस्ट देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है जो अभिजीत देवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वही हमारा भी उद्देश्य है इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं
14: जो डिसीजन बीसीआई का था वो गलत था हार्श डिसीजन था इलीगल डिसीजन था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो डिसीजन उन्होंने रोल बैक किया है ये स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों में हमारे कोलीग्स होने वाले हैं बार में और इस किस्म के हार्श डिसीशंस और जल्दबाजी में लिए गए डिसीशंस आर नॉट करेक्ट
15: यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ एग्जांपल ही इज सेटिंग अप फॉर द इंप्रेशनेबल माइंड्स बिकॉज द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ द लीगल प्रोफेशन सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी डिबेटेड वेदर अ पर्सन लाइक दिस कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली एंड वेदर He should be allowed to pass orders without reference to any provision of the statute, sweeping orders without realizing whether he has such powers to do so at all or not.
0: And my colleague Srishti Ojha is joining me on this story now. Srishti, last night was a series of dramatic pronouncements by the Bar Council. First, they issued a letter asking for an inquiry, saying that nobody will be enrolled. Just hours later, they took back that decision. And in the middle of the night, a statement coming in from Manan Mishra that, well, we are withdrawing all proceedings. We are closing all proceedings. In that time period, so much tension for the students and so much questions being asked. What exactly is the authority that the Bar Council had to take such a decision? What more are you picking up? Because today, the Chief Justice of India himself had to step in and clarify the issue.
16: Well, yes, Anisha, like you mentioned, just in a few hours after those directions had come in from the Bar Council of India, the decisions faced a lot of criticism from people regarding questioning the authority of the Bar Council of India to issue these directions in the first place. We saw the Bar Council of India, the Bar Council of India chairman, then withdraw that particular order, also admitting that they also want to work in students' interests, and the order was issued in haste. Now, despite the withdrawal by BCI to Today, that case was mentioned before the Supreme Court, and we saw the Chief Justice of India himself, who's also a part of this entire issue in a way, himself question BCI's decision. They called out the Bar Council of India for issuing such orders and also questioned what authority, what place did the BCI have to interfere? It is not involved in the issue at all. Why is BCI unnecessarily interfering in this entire issue? We also saw the CJI say that the students have the right to raise their issues, to peacefully protest. They peacefully try to put forth their point. There's nothing wrong with that. And it was just a dialogue between those students and the Chief Justice of India himself. Why did the BCI, it does not concern BCI at all, so why did the BCI interfere at all? Now, we saw the court being informed that BCI has already withdrawn its decision. Despite that, the Supreme Court went ahead, issued notice to BCI on this particular matter. We also saw another question being raised by the bench as to whether the Bar Council of India was convened, if a meeting was convened before such a decision was taken by the council, the court has very clearly, it's clear from the order today that the court wants to get into this issue and find out what exactly happened and what led to those directions by the BCI. In the meantime, the court has said that no punitive action would be taken against any student, as far any student or faculty member, as far as those BCI orders are concerned. We also spoke to a BCI chairman after the order, and he has said that the order has been withdrawn, the issue is closed, but he would be submitting they would be submitting their response before the Supreme Court.
0: Now, thank you very much for that, Srishti Ojha. Stay on with me, because I'm also going to need you to talk to us about our next story, the what is breaking news that's coming in now from the Supreme Court. It's a big relief for comedian Samay Raina as the Supreme Court closes all FIRs against Samay Raina and others which had arisen from the insensitive remarks made against persons with disabilities on the show India's Got Latent. The Supreme Court has today ordered that the respondents organize the chess tournament for the specially abled persons from 14th to 16th March 2026, which received widespread media coverage and awareness being spread about various organizations which are working for people with disability, including the SMA, which is what the disease, which was a disability that was made fun of in that particular episode. The court also noted that the event included a large donations for the organizations who are working for such persons. And four more such shows were scheduled for fundraising, but due to logistical issues, specific arrangements could not be made for inviting the specially abled persons for those particular shows. Remember, the Supreme Court has now noted that Samay Raina and the others have expressed their remorse and their willingness to invite persons suffering from SMA as well as provide financial support to such persons with disabilities. And on that ground, the court has now closed the FIRs that had been filed against these comedians. Srishti is continuing with me on this story. Srishti, we saw the very, very serious remarks coming in from the Supreme Court asking Samay Raina and the other comedians first to apologize and then to take steps specifically for raising awareness and spreading awareness about persons with disabilities. And today this matter has finally been closed. But there were other allegations also against these comedians. What happens to the larger case?
16: Well, Anisha, as we remember, the India's Got Latent issue had led to filing of several cases against these comedians who were involved. Now, this particular case that we're talking about today was regarding certain remarks made by them in one of the episodes against persons with disabilities. So, Cure SMA Foundation had then approached the Supreme Court, the top court, and then asked them to file a separate petition other than the ongoing India's Got Latent controversy case, flagging these particular issues. Now, in the last few months, we have seen Supreme Court issue directions and also call out these comedians, Samay Raina and the other comedians who were part of the panel, for the insensitive remarks that they had made. We saw these comedians apologize. Now, the court has acknowledged that, yes, they have expressed remorse. Several directions were issued to them to organize events involving and in favor of these SMA survivors and other specially abled people. Today, the top court has decided to close the cases against Samay Raina.
0: All right. Thank you very much for that, Srishti Ojha, joining us with that breaking news that's come in of relief against comedian Samay Raina and the others. It's time now for us to take a very short break. On the other side, our entertainment bulletin in the club. Keep watching India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाता।

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. Some stories don't belong to the past. They belong to every generation. Batwara, 1947, revisits the pain of partition through a powerful story of loss, courage, and humanity. Starring Sunny Deol and directed by Rajkumar Santoshi, the film reminds us that while history created borders, humanity refused to be divided. Up next is our report.
1: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
2: Some lines were drawn on a map.
1: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
2: Others were etched into history forever. Only few moments have reshaped the Indian subcontinent like the partition of 1947. And the Sunny Deol starrer Batwara 1947 revisits that defining chapter through a deeply emotional story of loss, resilience and humanity.
3: Manga lena hai
4: irada to nahi hai par itraz bhi nahi hai.
2: Set against the chaos of partition, the film follows a family forced to leave everything behind as violence tears through their world.
4: Mar raha hai insaan. जीते जी मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
2: In search of a new beginning, they cross the newly drawn border only to find themselves in a haveli still occupied by an elderly Hindu woman played by Shabana Azmi.
4: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
5: अम्मा यहाँ कोई है?
6: कौन है आप?
5: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कार्यज खुस है?
6: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
5: मैं कितने नहीं जाना, मेरा कार्य है।
2: However, she refuses to abandon the home that holds a lifetime of memories.
7: कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिकर है।
4: आप मुझे धमका रहे हैं?
7: पंगा लेना है?
4: इरादा तो नहीं, पर इतराज भी नहीं है।
2: As communal tensions escalate, Sunny Deol's character stands between hatred and humanity, choosing compassion over conflict.
8: मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो।
6: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है।
2: Meanwhile, Karan Deol appears as his on-screen son, standing shoulder to shoulder with his father as the family struggles to survive an uncertain future.
9: मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है।
10: तू उस्ताद को नहीं जानता
11: और तू मेरे बाप को नहीं जानता।
2: Interestingly, Batwara 1947 also stands out for its rare A certification, a distinction seen in only a handful of Sunny Deol's films. Directed by Rajkumar Santoshi and backed by Aamir Khan Productions, it also stars Preeti Zinta, Ali Fazal and Abhimanyu Singh in pivotal roles.
12: आग लगा दूंगा पूरे शहर को।
13: हिंदू औरत के लिए आप?
12: हिंदू औरत? वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
2: Inspired by Sayyed Asghar Wajahat's acclaimed play Jin Lahore Nahi Vikhya, Batwara 1947 isn't just about the partition that divided a nation. It's about the humanity that refused to be divided.
14: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
15: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।

0: Hello everyone and welcome to this very special conversation. The monsoon session of Parliament was a near total washout. The distrust between the opposition and the Treasury benches was on full display, and that is also continuing now outside Parliament. What was on government's agenda and what is the government's game plan? Now, joining me is Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Kiran Rijiju ji, shukriya humse baat karne ke liye. I'm going to begin with the numbers that you gave. You said that Lok Sabha productivity was at 19%, Rajya Sabha at 39.17%. Nine of the bills passed by the lower house, only with the minister speaking. My question is that the parliament is for scrutiny. It is for behas. Us par charcha honi chahiye thi, jo nahi hui. To kya पार्लियामेंट चलाना आपकी सरकार के लिए एक फॉर्मेलिटी है?
1: शुक्रिया जी. सबसे पहले तो सरकार के दृष्टि से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करना था हमने पूरी की. सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी पास 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बिल्स. सो वी आर हैप्पी दैट द गवर्नमेंट बिजनेस हैज ट्रांजैक्टेड. बट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इफ वी से that have we run the house as per the norms of the parliamentary democracy, then definitely no. Because as a parliamentarian, I would definitely want to scrutinize the bills, and all the members should get enough time to speak, to suggest, intervene, and also, if necessary, to amend. So from government's point of view, the bills are passed, but who is in the loss? It is the opposition parties who could not put forward their views during the discussion because they did not take part in the discussion. So my view on this entire monsoon session is in two parts. Purely from the government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion, and some of the opposition parties also did take part in the discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
0: You know what happened before this session? You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident that you will pass the delimitation bill. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. और FCRA वो तो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन हैड एन अपर हैंड इन गेटिंग इट सेंट टू द जेपीसी.
1: नहीं, सबसे पहले तो हमने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए. आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिवीजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं. और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है. लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया. जैसे FCRA का बिल के बारे में आपने जिक्र किया,
0: FCRA. लेकिन सर एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी. संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास, विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3.
1: यस, बट वी डिड नॉट प्रेस फॉर इट बिकॉज वी थॉट लेट देयर बी मोर कंसल्टेशन विद इन द पार्टीज. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया. देखिये, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं. अपोजिशन कुछ भी कहे, उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है. हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया. बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीस मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
0: एफसीआरए पे,
1: नहीं कोई भी बिल, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा, 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई। जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
0: लेकिन सर, इफ ओपोजिशन वांट्स डिस्कशन ऑन सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
1: मैं
0: तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
1: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए,
0: लेकिन
1: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ। हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते, और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए
0: किसी पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड।
1: अभी कुछ कहना नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा।
0: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
1: वो तो मैं
0: इसलिए कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
1: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
0: बट व्हाट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वांटेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर,
1: राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
0: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
1: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है, हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे।
0: But sir, Home Minister Amit Shah, as the Congress is saying, and he offered on 12th that he will sit from that day at 3 p.m. 12th
1: offer
0: ne
1: kiya, pehle
0: till
1: kiya, maine,
0: 3 p.m. Next
1: Home
0: day.
1: Minister ne kab offer kiya? Jab maine baar baar kaha ki hum charcha ke liye tayar hai, maine sadan mein bhi kaha, business advisory mein bhi maine committee ko jankari diya ki hum agitation jo students ka hai charcha ke liye tayar hai. Home Minister to baad mein isliye likha पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है। तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए। हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं, तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं, तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
0: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
1: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? You protest to seek government's attention or government's response. Here, government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So, where is the question of protest?
0: But see,
1: Maria, you have to understand one thing.

0: उसके बाद हम लोग पूरा इधर बाहर फेंक दिया। उसके बाद थोड़ा पानी स्लो हो गया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके निकल गए।
1: कौन आया आपको सबसे पहले बचाने के लिए?
0: कोई नहीं आया था। उसके बाद रास्ते में इंजीनियर था, वो आए थे।
1: कितने लोग थे आप काम करते?
0: 15-20 आदमी थे।
2: अरे मंजर बहुत खतरनाक था, जैसे कि जैसे उधर से हवापन जैसे उधर से आया, एकदम लूज गिर गया था ना, इसलिए पानी का बास हम लोग इधर भर तक आ गए थे।
3: ऐसा तेज रफ्तार से पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए।
4: मंजर तो बहुत भयानक था, कई बार हवा आया फिर पानी आया, फिर पानी सब तरफ टलने के अंदर भर गया। उसके बाद तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। वही करीब 14-15 आदमी थे, टोटल 20-20 हो सकते हैं।
5: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
6: You are watching India Today.
7: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: Lok Sabha productivity was at 19%, Rajya Sabha at 39.17%. Nine of the bills passed by the lower house, only with the minister speaking. My question is that the parliament is for scrutiny. It is for behas. Us par charcha honi chahiye thi, jo nahi hui. To kya parliament chalana aapki sarkar ke liye ek formality hai?
1: Shukriya ji. सबसे पहले तो सरकार के दृष्टि से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करना था हमने पूरी की. सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी पास 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बिल्स. सो वी आर हैप्पी दैट द गवर्नमेंट बिजनेस हैज ट्रांजैक्टेड. बट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इफ वी से दैट हैव वी रन द हाउस एज पर द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, then definitely no. Because as a parliamentarian, I would definitely want to scrutinize the bills, and all the members should get enough time to speak, to suggest, intervene, and also, if necessary, to amend. So from government's point of view, the bills are passed. But who is in the loss? It is the opposition parties who could not put forward their views during the discussion because they did not take part in the discussion. So my view on this entire monsoon session is in two parts. Purely from the government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion, and some of the opposition parties also did take part in the discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
0: You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident ki aap delimitation bill pass karwa denge. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. Aur FCRA, wo to ek simple मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन हैड एन अपर हैंड इन गेटिंग इट सेंट टू द जेपीसी.
1: नहीं, सबसे पहले तो हमने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए. आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिवीजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं. और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है. लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया. जैसे एफसीआरए का बिल के बारे में आपने जिक्र किया,
0: लेकिन सर एक मिनट में आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी. संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास्ड, विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3.
1: यस, बट वी डिड नॉट प्रेस फॉर इट बिकॉज वी थॉट लेट देयर बी मोर कंसल्टेशन विद इन द पार्टीज. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया. देखिये, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं. अपोजिशन कुछ भी कहे उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है. हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया. बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया, और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा. कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है. और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीज मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
0: एफसीआरए पे,
1: नहीं कोई भी बिल, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की, और बाकी ओपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा, 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
0: बट डिड यू सेंस दैट व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मॉनसून सेशन दैट व्हाट यू हैड होप्ड वाज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन, वो नहीं दिखा आपको बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन व्हिच हैपेंड अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन 20th July? एवरीथिंग चेंज्ड।
1: सी मारिया, अगेन आई एम टेलिंग यू द प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर, ऑल्दो मेनी पीपल नो इट इज इलीगल प्रोटेस्ट, but we did not do anything. The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed, but despite that they went on protest. Did any force was used? No.
0: On 20th July,
1: that is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they marched towards the parliament. So the whole country has to know, as long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers, genuine students, we want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं, वो तो आप कहां से वो मालूम है? अरे भाई, स्टूडेंट नहीं है वो, दे आर नॉट स्टूडेंट।
0: इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हाउ आर दे नॉट स्टूडेंट्स?
1: इफ यू आर ए स्टूडेंट, you must identify yourself as a regular student. This group called Bhim Army, Samajwadi, Aam Aadmi, they were there throughout the agitation. Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit, but Congress leaders didn't take part in the protest, student protest. But in the name of student protest, who all were there misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students.

0: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
1: राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यही तो कहा है। लोग भूल गए ऑपरेशन सिंदूर, भारतवर्ष अकेला पड़ गया था। और प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ।

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर पर पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: He said, had Narendra Modi been the Prime Minister of India at the time of independence, or somebody like Sardar Vallabhbhai Patel at the helm of affairs, there wouldn't have been this damage to the nation. He also said if a person like Sardar Patel had been the Prime Minister at the time of independence in 1947, nobody would have been able to disintegrate India. Taking on the Congress Party on the issue of partition in 1947, Yogi Adityanath said, Congress was truly responsible for the partition and the subsequent massacre. He went on to say, had Narendra Modi been the Prime Minister at the time of independence, nobody would have been able to damage India in the least. He then drew a parallel with the anti-CAA, Citizenship Amendment Act, protests in the country, saying India had to pay a heavy price for what he termed was cowardice of the Congress Party members, a character that the nation witnessed during CAA protests. Cowardice, he claimed, cost the country in terms of loss of territory and people. Going back to 1947, he indicated that Sindh had been a Hindu-dominated and Sindhi-dominated area. It was handed over to Pakistan. Punjabi-dominated Punjab was also partitioned and Hindu-dominated areas were handed over to Pakistan. Ahead of elections in the state, battle lines are very clearly drawn and we get you details. Also coming up on India First, on Independence Day Eve, will India be free from pressures of foreign-made weapons? Look at the wars that are being fought in Europe and in West Asia. Both Ukraine and Iran are taking on the world's biggest two superpowers, the United States and Russia. And they're still continuing to fight. What are lessons for India, especially on the front of being Atmanirbhar or self-reliant in defense manufacturing? We get you details on 8:30 p.m. tonight. But first, we begin India First with an India Today exclusive, an interview with Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. The Parliamentary Affairs Minister rejected allegations of excessive use of force by the police against students during the July 20 protests in the national capital. Kiran Rijiju said there were no widespread injuries and dismissed claims that protesters were subjected to indiscriminate pellet firing. He also defended the Delhi police, saying they handled the protests effectively. The Parliamentary Affairs Minister hit out not just at the Congress Party, but also at Leader of Opposition Rahul Gandhi, accusing him and the Congress of running away from a debate in Parliament. Kiran Rijiju addressed the Congress's controversial skit, as he put it, in which Sandeep Dixit was heard making what is being described as sexist remarks about the Italian Prime Minister, Giorgia Meloni, while he and Rahul Gandhi were targeting Prime Minister Narendra Modi's hugplomacy. He spoke exclusively to India Today's Maria Shakil. Listen in.
1: If opposition wants discussion on certain important issues, which also includes चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है, तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
2: पर एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
1: लेकिन
2: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ। हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
1: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, दे आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
2: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा।
1: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
2: देखिए वो तो मैं इसलिए
1: कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
2: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
1: बट डिड यू सेंस दैट व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मॉनसून सेशन दैट व्हाट यू हैड होप्ड वाज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन वो नहीं दिखा आपको बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन व्हिच हैपेंड अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन 20th July? एवरीथिंग चेंज्ड।
2: सी मारिया, अगेन आई एम टेलिंग यू द प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर, ऑल्दो मेनी पीपल नो इट इज इलीगल प्रोटेस्ट बट वी डू नॉट डू एनीथिंग। The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
1: On 20th July?
2: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they marched towards the parliament. So the whole country has to know. As long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers, genuine students, we want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं वो तो आप कहां से मालूम है? अरे भाई स्टूडेंट नहीं है वो, दे आर नॉट स्टूडेंट्स।
1: If they are following a particular ideology, how are they not students?
2: If you are a student, you must identify yourself as a regular student. This group called Bhim Army, Samajwadi, Aam Aadmi, they were there throughout the agitation. Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit, but Congress leaders didn't take part in the protest, student protest. Hmm. But in the name of student protest, who all were there, misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students.
1: What Rahul Gandhi said here, that he wanted a statement from Home Minister Amit Shah.
2: Rahul Gandhi ji ko vishwas mat kijiye. वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
1: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
2: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है, हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए चर्चा करेंगे.
1: बट सर, होम मिनिस्टर अमित शाह एज द कांग्रेस इज सेइंग एंड ही ऑफर्ड ऑन 12th दैट ही विल सिट फ्रॉम दैट डे एट 3 PM.
2: ऑफर नहीं किया, पहले किया मैंने
1: 3 PM.
2: होम मिनिस्टर ने कब ऑफर किया? जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है. मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमिटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है. होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है. तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए. हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं. तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है. कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते. कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं.
1: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट.
2: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट. हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? यू प्रोटेस्ट टू सीक गवर्नमेंट्स अटेंशन और गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स. Here government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
1: But
2: see,
1: this
2: Maria,
1: offer-
2: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
1: What we have seen over the last few days on social media, a lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it. And his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, ये बेहद चिंताजनक है.
2: राहुल जी को हिस्ट्री के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम नेफा था, आपको मालूम है, मैं आपको 2 मिनट टाइम लेता हूं इसको समझाने में. अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वो भारत का साथ 1951 में जुड़े. 1951 से पहले वो टैक्स देते थे तिब्बत में. 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए, और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप, मैकमोहन लाइन से नीचे, ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्साई चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है. जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको. उस समय साइन तो नहीं किया, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी. लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्साई चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा. 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना. तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया. 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया. उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए. हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था. बाद में असम राइफल की जगह में ITBP आए. इंडियन आर्मी तो है ही, लेकिन फ्रंट में ITBP रहते हैं. 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अब चीन के डर की क्या क्या है वो पॉलिसी बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया।
2: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है,
1: हाँ।
2: क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया, तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, पोस्ट बनाया, वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ, ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारे लोगों का जो कंसर्न है सही है, लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो इंडियन टेरिटरी, अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ओरदे ले चुके हैं।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: My view on this entire monsoon session is in two parts. Purely from the government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion, and some of the opposition parties also did take part in the discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
1: You know what happened before this session? You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident ki aap delimitation bill pass karwa denge. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. Aur FCRA, wo to ek simple majority ke saath bill pass ho sakti thi. Lekin opposition had an upper hand in getting it sent to the JPC.
0: Nahi, sabse pehle to humne महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए। आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिविजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है। लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया। जैसे एफसीआरए का बिल के बारे में आपने जिक्र किया,
1: एफसीआरए, लेकिन सर एक मिनट मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास्ड विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3।
0: यस, बट वी डिड नॉट press for it because we thought let there be more consultation within the parties. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। देखिए, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं। अपोजिशन कुछ भी कहे उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है। हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया। बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीस मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
1: एफसीआरए पे,
0: नहीं कोई भी बिल। लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी ओपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ। सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा। 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई। जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा। लेकिन चर्चा हुई.
1: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वॉन्ट्स डिस्कशन ऑन सर्टन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है.
0: देखिए मैं
1: तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
0: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा. तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना. तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे. वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया. अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा. देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए हैं, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए.
1: लेकिन
0: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ. हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया. पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं. पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते है. और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
1: किसी पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो.
0: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे. हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ. यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा, अगर वहां चार पांच हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? तीन चार सौ लोग को चोट लगेगा.
1: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड.
0: देखिए वो तो मैं
1: इसलिए कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज.
0: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है. इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ. तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है. अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना. सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
1: बट व्हाट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वांटेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर.
0: आप राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं. लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो. अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ओपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का.
1: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल.
0: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है. हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए चर्चा करेंगे.
1: बट सर, होम मिनिस्टर अमित शाह एज द कांग्रेस इज सेइंग एंड ही ऑफर्ड ऑन 12th दैट ही विल सिट फ्रॉम दैट डे एट 3 PM.
0: ऑफर नहीं किया, पहले किया मैंने
1: 3 PM.
0: होम मिनिस्टर ने कब ऑफर किया? जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमिटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है. होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उसने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है. तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए. हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं. तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है. कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते. कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं.
1: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन opposition, protests in parliament, disruption was seen as legitimate.
0: Protest is legitimate. Who is saying there cannot be any protest? You protest to seek government's attention or government's response. Here, government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
1: But
0: see,
1: this
0: Maria,
1: offer...
0: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
1: But did you sense that while, you know, during the course of this monsoon session, that what you had hoped was a divided opposition, wo nahi dikha aapko, because of the crackdown which happened against protesting students on 20th of July, everything changed.
0: See, Maria, again, I'm telling you, the protest in Jantar Mantar, although many people know it is illegal protest, but we did not do anything. The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
1: On 20th July?
0: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they march towards the parliament. So the whole country has to know, as long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers. Genuine students, we want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं वो तो आप कहां से
1: वो
0: मालूम
1: है students
0: होंगे अरे भाई स्टूडेंट नहीं है वो दे आर नॉट स्टूडेंट्स
1: इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हाउ आर दे नॉट स्टूडेंट्स
0: इफ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ रेगुलर स्टूडेंट दिस वन ग्रुप कॉल्ड भीम आर्मी समाजवादी आम आदमी दे वेर देयर थ्रू आउट द एजुकेशन Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit, but Congress leaders didn't take part in the protest, student protest. Hmm. But in the name of student protest, who all were there, misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead and, you know, they try to encourage the students
1: but
0: to march towards the parliament.
1: Interestingly, Mohan Bhagwat, RSS chief, has said that Gen Z is honest, emotional, deeply patriotic and their grievances are genuine.
0: That is what Prime Minister has already said, that we have to listen to the young generation. Of course, Gen Z is not our concept. It's some Western innovated concept. But still, if you count it, that age group, young group, we have to listen to the students. They are the future. But why some political parties are trying to misuse the students? Abhijit Dibke, he's an Aam Aadmi worker. Everybody knows that.
1: But there are...
0: Are you aware of that?
1: But there are also those who are associated with them who may not be Aam Aadmi Party workers.
0: I'm not saying the protest is bad. What I'm saying is some political parties, some political leaders whose political future and political standing has completely gone. They want to revive their political fortune through the student protest. That is not good.
1: But Mr. Riju, as a young parliamentarian yourself, you have
0: I'm not that young.
1: You've always supported the youth of the country.
0: See,
1: then shouldn't you be more proactive and agree with what Mohan Bhagwat ji said, that they are our own people?
0: Maria, I'm once again saying, Mohan Bhagwat ji, what he said. You quoted rightly. What I'm quoting is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has clearly told all of us, he told the nation, he addressed the students saying that we will listen to the students. Except that, let us not abuse each other. Let us conduct ourselves in a civilized manner, more civil in our approach. And we are in a democracy. If you don't protest, if you don't resist, if you don't accuse, if you don't criticize the government, where will you do it? We welcome it. We have come through so much of turbulence in the past. We were in opposition for the last 50 years, more than 50 years. We never misused any agitation to propel ourselves into the government. I myself have walked for months and months and months in the villages. That's why, don't tell me I'm young parliamentarian.
1: Okay.
0: I had enough of my experience in the parliament, and I can definitely say that I'm upset because the parliamentary ethics, which we all love to follow, the Congress party has totally broken their parliamentary ethics. They have conducted themselves in such a way that I'm very upset. I'm very sad. As a parliamentary affairs minister, I tried to bridge the gap, but the Congress
1: party didn't agree. How many times did you meet and cross across the aisle, go across the aisle, go across to the opposition parties to hold meetings? Kitne baar aapne koshish kiya? Kitne baar aap mulaqat ki hai?
0: Main to Rahul ji se bhi kamre mein bhi lagbhag ek ghante hum baat kiye, aur aana jana mein bhi thoda thoda baat to hote rehte hai. Main telephone se bhi Rahul ji se mera baatcheet hui hai. Priyanka ji ko maine bola. Priyanka ji ko to main itna tak bola to aap to zyada samajhdar lagti hai, kam se kam aap to aa jao baatcheet ke liye aur डिबेट डिस्कशन के लिए आप आ जाइए. फिर कांग्रेस के और कई नेता हैं, वेणुगोपाल जी, सबको मैंने बात किया. मेरा भाई, छोटा भाई समान गौरव को मैंने कितना बार बोला, थोड़ा समझाओ राहुल जी को.
1: बट यू नो व्हाट इज आल्सो प्लेइंग आउट इज वेरी वेरी कंसर्निंग ट्रेंड वेयर वुमेन आर ऑलमोस्ट बीइंग यूज्ड एज टूल्स फॉर यू नो फॉर स्कोरिंग पॉलिटिकल पॉइंट्स. व्हाट प्लेड आउट एट कांग्रेस पार्टीज इवेंट यस्टरडे, and then a counter which came from your party colleague and a former and a present member of parliament, it appears that women, even in positions of power, women leaders have become fair game.
0: Maria, we will always ensure that we don't do anything which will show disrespect and which will hurt the dignity of women. We are extremely careful about that. Yesterday, what Rahul Gandhi ji did was very unfortunate. In fact, it's very despicable. He had conducted in such a way that demeaned his own position. Rahul Gandhi ji is the leader of the opposition, and he's also son of former prime minister. Prime minister represents the country. Prime minister is the face of the country. By ridiculing Prime Minister's position, you are actually ridiculing your own position. It's demeaning the position which he holds. It's very unfortunate. I think because of such conduct, people will fail to trust Rahul ji, and people will not take him seriously if he continues to conduct in such manner.
1: But the language which was used by your party colleague in response to the outrage which came.
0: Which response?
1: Nishikant Dubey.
0: No, Prime Minister didn't say anything. None in the cabinet had used foul language. Nobody in the party president or senior functionary said anything. I cannot comment about everything or everybody, but I can definitely say that the responsible people in the party, especially the ministers, we never use such words.
1: You know, I have a couple of more questions, and this is a question that I'm asking to the former law minister, also a lawyer. How do you look at the chairman of Bar Council of India and your party MP, Manan Mishra's directive?
0: What directive?
1: Which he said that Nalsar students will not be allowed. And then, of course, there was withdrawal after the outrage. Do you see that this kind of collective punishment which was announced?
0: No, that I think I have not gone detail into that. That the chairman of the Bar Council of India can respond to your question. But what I can say is, we must be tolerant to each other. We all must respect each other. Chief Justice of India is head of the Indian judiciary. His position has to be given due respect. Every institution will have to maintain its dignity. If few groups in any institution tries to take a course which is motivated or influenced by the ideology, then it will do lots of harms to the institution itself. If you don't have the capacity to listen to the person of the opposite view, then it's not good for the democracy. And when it comes to judiciary or the Supreme Court judges or anybody, I think we have to be extremely careful. I cannot comment on that incident because I have not really got information about
1: but
0: that in details.
1: Universities and campuses, spaces for raising concerns and protests.
0: That's what I'm saying. No? You should raise your concerns and all. How can you prevent somebody from coming to the
1: bar?
0: No, to the institution or anywhere. See, what I'm saying is, every institution will have lots of people with diverse background, different ideology. If you are not prepared to invite, or if you are there to prevent the entry of any person whom you don't like, institution cannot run that way.
1: My last question to you is coming from what we have seen over the last few days on social media. A lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it. And his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par Chin ne hamari sena ko patrolling karne se rok diya hai. Ye behad chinta janak hai.
0: Rahul ji ko history ke baare mein pura gyan nahi hai, kyunki Arunachal Pradesh, jiska naam Nefa tha, aapko malum hai, main aapko 2 minute time leta hu isko samjhane mein. Arunachal Pradesh mein jo Tawang sector hai, wo Bharat ka saath 1951 mein jude. 1951 se pehle wo tax dete the Tibet mein. 1959 mein Dalai Lama ji Tibet chhod ke aaye. और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप मैकमोहन लाइन से नीचे ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्सर चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है. जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उसमें साइन तो नहीं किया लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी है. लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्सर चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा. 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना. तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया. 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए. हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था. बाद में असम राइफल के जगह में आईटीबीपी आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में आईटीबीपी रहते हैं. 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए. अब चीन के डर की क्या क्या है वो पॉलिसी बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा. लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया.
0: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है,
1: हाँ.
0: क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया, तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे हैं, वहां चाइना ने इस्टैब्लिश किया है पोस्ट बनाया, वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटीज था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ, ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ऑर्डर ले चुके हैं।
1: ऑलराइट, थैंक यू।
0: लेकिन हम एक इंच नया जमीन तो नहीं देने के लिए, हम लोग पूरा हमारा फोर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, हम लोग तो लेट से शुरू किया ना, चाइना तो पहले कर लिया।
1: ऑलराइट किरण रिजिजू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस।
0: थैंक यू।

0: वी कैन ड्राइव देम क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी पार्ट, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड, वो भाग गया, वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time, they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा.
1: Fight is between order and expression. Okay? There are some people who want to give orders and order society. And there are other people who want to express themselves. And that order is disturbing their expression and our expression is disturbing their order. And every single person's perspective can fit into that. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Janta Mata, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves. And the government says, no, we are going to create order in Janta Mata, you cannot express yourselves.

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. Some stories don't belong to the past. They belong to every generation. Batwara, 1947, revisits the pain of partition through a powerful story of loss, courage, and humanity. Starring Sunny Deol and directed by Rajkumar Santoshi, the film reminds us that while history created borders, humanity refused to be divided. Up next is our report.
1: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
2: Some lines were drawn on a map.
1: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
2: Others were etched into history forever. Only few moments have reshaped the Indian subcontinent like the partition of 1947. And the Sunny Deol starrer Batwara 1947 revisits that defining chapter through a deeply emotional story of loss, resilience and humanity.
3: Manga lena hai.
4: Irada to nahi hai. Par itraz bhi nahi hai.
2: Set against the chaos of partition, the film follows a family forced to leave everything behind as violence tears through their world.
4: Mar raha hai insaan. जीते जी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा।
2: In search of a new beginning, they cross the newly drawn border only to find themselves in a haveli still occupied by an elderly Hindu woman played by Shabana Azmi.
4: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
5: अम्मा यहाँ कोई है?
6: कौन है आप?
5: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कार्यज खुश है?
6: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
5: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा कार्य है।
2: However, she refuses to abandon the home that holds a lifetime of memories.
7: कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिकर है।
4: आप मुझे धमका रहे हैं?
7: पंगा लेना है?
4: इरादा तो नहीं, पर इतराज भी नहीं है।
2: As communal tensions escalate, Sunny Deol's character stands between hatred and humanity, choosing compassion over conflict.
8: मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो।
6: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है।
2: Meanwhile, Karan Deol appears as his on-screen son, standing shoulder to shoulder with his father as the family struggles to survive an uncertain future.
9: मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है।
10: तू उस्ताद को नहीं जानता
11: और तू मेरे बाप को नहीं जानता।
2: Interestingly, Batwara 1947 also stands out for its rare A certification, a distinction seen in only a handful of Sunny Deol's films. Directed by Rajkumar Santoshi and backed by Aamir Khan Productions, it also stars Preeti Zinta, Ali Fazal and Abhimanyu Singh in pivotal roles.
12: आग लगा दूंगा पूरे शहर को।
13: हिंदू औरत के लिए आप?
12: हिंदू औरत? वो माँ है माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
2: Inspired by Sayyed Asghar Wajahat's acclaimed play Jin Lahore Nahi Vikhya, Batwara 1947 isn't just about the partition that divided a nation. It's about the humanity that refused to be divided.
14: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
15: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।

0: एंटरटेनमेंट ब्यूरो इंडिया टुडे।
1: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
2: मोहल्ले दिया गलियां उन्हें खून हो जानी है।
3: होएगा तो ही जरब जाएगा।
2: पंगा लेना है?
4: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
5: Some characters become iconic, others become immortal. Nearly two decades after Awarappan won hearts, Shivam Pandit is returning for another emotional battle. Here's the full story.
6: Awarappan, Dhunda Sukh.
7: 19 years ago, a broken man walked into Bollywood history. And never really walked out of our hearts.

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डिस्प्रेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक होंगे। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।

0: स्पॉट होते हैं। एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
1: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
0: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा, अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा।
1: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
0: देखिए वो तो मैं
1: इसलिए कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
0: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
1: बट डिड यू सेंस दैट व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मॉनसून सेशन दैट व्हाट यू हैड होप्ड वाज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन, वो नहीं दिखा आपको बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन व्हिच हैपेंड अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन 20th July? एवरीथिंग चेंज्ड।
0: सी मारिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, द प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर, ऑल्दो मेनी पीपल नो इट इज इलीगल प्रोटेस्ट, बट वी डू नॉट डू एनीथिंग। The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
1: On 20th July?
0: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they marched towards the parliament. So the whole country has to know. As long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers, genuine students, we want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं, वो तो आप कहां से मालूम है? अरे भाई, स्टूडेंट नहीं है वो, दे आर नॉट स्टूडेंट।
1: इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हाउ आर दे नॉट स्टूडेंट्स?
0: इफ यू आर ए स्टूडेंट, you must identify yourself as a regular student. This group called Bhim Army, Samajwadi, Aam Aadmi, they were there throughout the agitation. Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit, but Congress leaders didn't take part in the protest, student protest. Hmm. But in the name of student protest, who all were there misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students.
1: What Rahul Gandhi said here, that he wanted a statement from Home Minister.
0: Rahul Gandhi ji ko vishwas mat kijiye, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ओपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
1: सो इट गॉट स्टक between the treasury benches and opposition on a particular rule?
0: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है। हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे।
1: But sir, Home Minister Amit Shah, as the Congress is saying, and he offered on 12th that he will sit from that day at 3 p.m.
0: offered नहीं किया, पहले किया मैंने
1: 3 p.m.
0: होम मिनिस्टर ने कब ऑफर किया। जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमेटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है। तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए। हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं, तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
1: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
0: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? यू प्रोटेस्ट टू सीक गवर्नमेंट्स अटेंशन और गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स। Here government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
1: But
0: see,
1: this
0: Maria,
1: offer-
0: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
1: What we have seen over the last few days on social media, a lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it, and his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, ये बेहद चिंताजनक है।
0: राहुल जी को हिस्ट्री के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम नेफा था, आपको मालूम है, मैं आपको दो मिनट टाइम लेता हूं इसको समझाने में। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वो भारत का साथ 1951 में जुड़े। 1951 से पहले वो टैक्स देते थे तिब्बत में। 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए, और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप, मैकमोहन लाइन से नीचे, ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए। चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है। उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्सर चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है। जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उस समय साइन तो नहीं किया, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी। लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्सर चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा। 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना। तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया। 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए। हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था। बाद में असम राइफल के जगह में ITBP आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में ITBP रहते हैं। 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अब चीन के डर की क्या क्या है वो पॉलिसी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा। लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया।
0: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है,
1: हाँ।
0: क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया। तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह, याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टैब्लिश किया है, पोस्ट बनाया। वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं। इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ, और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ। ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओ ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ओर्दे ले चुके हैं।

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: CAA, Citizenship Amendment Act protests in the country, saying India had to pay a heavy price for what he termed was cowardice of the Congress Party members, a character that the nation witnessed during CAA protests. Cowardice, he claimed, cost the country in terms of loss of territory and people. Going back to 1947, he indicated that Sindh had been a Hindu-dominated and Sindhi-dominated area. It was handed over to Pakistan. Punjabi-dominated Punjab was also partitioned and Hindu-dominated areas were handed over to Pakistan. Ahead of elections in the state, battle lines are very clearly drawn and we get you details. Also coming up on India First, on Independence Day Eve, will India be free from pressures of foreign-made weapons? Look at the wars that are being fought in Europe and in West Asia. Both Ukraine and Iran are taking on the world's biggest two superpowers, the United States and Russia. And they're still continuing to fight. What are lessons for India, especially on the front of being Atmanirbhar or self-reliant in defense manufacturing? We get you details on 8:30 p.m. tonight. But first, we begin India First with an India Today exclusive, an interview with Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. The Parliamentary Affairs Minister rejected allegations of excessive use of force by the police against students during the July 20 protests in the national capital. Kiran Rijiju said there were no widespread injuries and dismissed claims that protesters were subjected to indiscriminate pellet firing. He also defended the Delhi police, saying they handled the protests effectively. The Parliamentary Affairs Minister hit out not just at the Congress Party, but also at Leader of Opposition Rahul Gandhi, accusing him and the Congress of running away from a debate in Parliament. Kiran Rijiju addressed the Congress's controversial skit, as he put it, in which Sandeep Dixit was heard making what is being described as sexist remarks about the Italian Prime Minister Giorgia Meloni, while he and Rahul Gandhi were targeting Prime Minister Narendra Modi's hugplomacy. He spoke exclusively to India Today's Maria Shakil. Listen in.
1: If opposition wants discussion on certain important issues, which also includes चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है, तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
2: अरे एक बात ये साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मा गर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
1: लेकिन
2: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ। हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
1: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
2: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा, अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को

0: लोग तो चोट लगेगा.
1: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड. देखिए
0: वो तो मैं
1: इसलिए कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज.
0: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है. इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ. तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है. अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना. सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
1: बट डिड यू सेंस दैट व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मॉनसून सेशन दैट व्हाट यू हैड होप्ड वाज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन वो नहीं दिखा आपको बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन व्हिच हैपेंड अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन 20th July. एवरीथिंग चेंज्ड.
0: सी मारिया, अगेन आई एम टेलिंग यू द प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर ऑल्दो मेनी पीपल नो इट इज इलीगल प्रोटेस्ट बट वी डू नॉट डू एनीथिंग. The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
1: On 20th July.
0: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they marched towards the parliament. So the whole country has to know. As long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the antisocial elements, and many of them are party workers, genuine students, we want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं वो तो आप कहां से मालूम है. अरे भाई स्टूडेंट नहीं है वो. They are not students.
1: If they are following a particular ideology, how are they not students?
0: If you are a student, you must identify yourself as a regular student. This group called Bhim Army, Samajwadi, Aam Aadmi, they were there throughout the agitation. Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit. But Congress leaders didn't take part in the protest, student protest.
1: Hmm.
0: But in the name of student protest, who all were there misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead. And, you know, they tried to encourage the students.
1: What Rahul Gandhi said here, that he wanted a statement from Home Minister
0: Amit Shah. Rahul Gandhi ji ko vishwas mat kijiye. वो बिना सोचे बात करते हैं. लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो. अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ओपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का.
1: सो इट गॉट स्टक between the treasury benches and opposition on a particular rule?
0: नहीं, स्टक नहीं है. कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है. हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे.
1: But sir, Home Minister Amit Shah, as the Congress is saying, and he offered on 12th that he will sit from that day at 3 p.m.
0: offer नहीं किया, पहले किया मैंने
1: 3 PM. Next
0: Home Minister ने कब ऑफर किया? जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमिटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है. होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है. तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए. हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं. तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
1: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
0: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? यू प्रोटेस्ट टू सीक गवर्नमेंट्स अटेंशन और गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स। Here government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
1: But
0: see,
1: this
0: Maria,
1: offer-
0: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
1: What we have seen over the last few days on social media, a lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it, and his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, ये बेहद चिंताजनक है।
0: राहुल जी को हिस्ट्री के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम नेफा था, आपको मालूम है, मैं आपको दो मिनट टाइम लेता हूं इसको समझाने में। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वो भारत का साथ 1951 में जुड़े। 1951 से पहले वो टैक्स देते थे तिब्बत में। 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए, और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप, मैकमोहन लाइन से नीचे, ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए। चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है। उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्साई चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है। जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उस समय साइन तो नहीं किया, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी। लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्साई चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा। 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना। तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया। 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए। हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था। बाद में असम राइफल के जगह में आईटीबीपी आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में आईटीबीपी रहते हैं। 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अब चीन के डर की क्या क्या है वो पॉलिसी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया।
0: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया, तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह, याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेसिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं, वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, पोस्ट बनाया, वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ, ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओ ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ऑर्डर ले चुके हैं।

0: ये राहुल गांधी जी को हार का जो डिस्प्रेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग?
1: राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक होंगे। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: biggest two superpowers, the United States and Russia. And they're still continuing to fight. What are lessons for India, especially on the front of being Atmanirbhar or self-reliant in defense manufacturing? We get you details on 8:30 p.m. tonight. But first, we begin India First with an India Today exclusive, an interview with Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. The Parliamentary Affairs Minister rejected allegations of excessive use of force by the police against students during the July 20 protests in the national capital. Kiran Rijiju said there were no widespread injuries and dismissed claims that protesters were subjected to indiscriminate pellet firing. He also defended the Delhi police, saying they handled the protests effectively. The Parliamentary Affairs Minister hit out not just at the Congress party, but also at Leader of Opposition Rahul Gandhi, accusing him and the Congress of running away from a debate in Parliament. Kiran Rijiju addressed the Congress's controversial skit, as he put it, in which Sandeep Dixit was heard making what is being described as sexist remarks about the Italian Prime Minister Giorgia Meloni, while he and Rahul Gandhi were targeting Prime Minister Narendra Modi's hugplomacy. He spoke exclusively to India Today's Maria Shakil. Listen in.
1: If opposition wants discussion on certain important issues, which also includes चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
2: देखिए मैं
1: तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
2: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसे आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
1: लेकिन
2: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ। हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
1: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
2: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा, अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा।
1: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
2: देखिए वो तो मैं
1: इसलिए कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
2: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
1: बट डिड यू सेंस दैट व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मॉनसून सेशन दैट व्हाट यू हैड होप्ड वाज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन, वो नहीं दिखा आपको बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन व्हिच हैपेंड अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑन 20th July? एवरीथिंग चेंज्ड।
2: सी मारिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, द प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर, ऑल्दो मेनी पीपल नो इट इज इलीगल प्रोटेस्ट, बट वी डू नॉट डू एनीथिंग।

0: The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
1: On 20th July...
0: That is when they marched towards Parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they marched towards the Parliament. So the whole country has to know. As long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the antisocial elements, and many of them are party workers, genuine students? We want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहाँ गाना गा के घूमते रहते हैं वो तो आप कहाँ से मालूम है? अरे भाई स्टूडेंट नहीं है वो. They are not students.
1: If they are following a particular ideology, how are they not students?
0: If you are a student, you must identify yourself as a regular student. This group called Bhim Army, Samajwadi, Aam Aadmi, they were there throughout the agitation. Students were there, but students were much lesser in the numbers. And Congress, yes, I can say that Congress did not take part in the protest. Congress leaders did visit, but Congress leaders didn't take part in the protest, student protest. Hmm. But in the name of student protest, who all were there, misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students.
1: What Rahul Gandhi said here, that he wanted a statement from Home Minister.
0: Rahul Gandhi ji ko vishwas mat kijiye, wo bina soche baat karte hain. Leader of opposition hone ke nate main usko samman karta hu, main usko izzat deta hu, lekin bina soche agar baat karega to uska hum jawab kaise de sakte hain? Dekhiye, Rahul Gandhi ji khud hi bola ki main jawab nahi sunna chahta hu, ek statement do. अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का.
1: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
0: नहीं, स्टक नहीं है. कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है. हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे.
1: But sir, Home Minister Amit Shah, as the Congress is saying, and he offered on 12th that he will sit from that day at 3 p.m.
0: offer ne kiya, pehle
1: till
0: kiya, maine,
1: 3 p.m. Next
0: Home Minister ne kab offer kiya? Jab maine baar baar kaha ki hum charcha ke liye tayar hai, maine sadan mein bhi kaha, business advisory mein bhi maine committee ko jankari diya ki hum agitation jo students ka hai charcha ke liye tayar hai. Home Minister to baad mein isliye likha पत्र स्पीकर को, इसलिए उसने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है. तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे, देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए. हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं. तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है. कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते. कांग्रेस में भी कुछ एमपीज हैं, टकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं.
1: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट.
0: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट. हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? You protest to seek government's attention or government's response. Here, government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
1: But
0: see,
1: this
0: Maria,
1: offer-
0: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. if parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
1: What we have seen over the last few days on social media, a lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it, and his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par Chin ne hamari sena ko patrolling karne se rok diya hai, ye behad chintajanak hai.
0: Rahul ji ko history ke bare mein pura gyan nahi hai, kyunki अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम नेफा था, आपको मालूम है, मैं आपको दो मिनट टाइम लेता हूं इसको समझाने में. अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वो भारत का साथ 1951 में जुड़े. 1951 से पहले वो टैक्स देते थे तिब्बत में. 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए, और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप मैकमोहन लाइन से नीचे, ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में यह कहा कि आप अक्सर चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है. जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उसमें साइन तो नहीं किया लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी. लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्सर चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा. 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना. तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया. 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए. हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था. बाद में असम राइफल के जगह में आईटीबीपी आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में आईटीबीपी रहते हैं. 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए. अब चीन के डर की क्या है वो पॉलिसी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा. लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
1: जगह नहीं गया.
0: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया. तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह, याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में. तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, पोस्ट बनाया. वो बात सही है लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहे. ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ, और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ. ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ. तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है. लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारे नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओ ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ओर्दे ले चुके हैं।